0: सो वेलकम बैक इट हैपेंस में आप सताक्षी के साथ हैं और मेरे साथ सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर कुछ बढ़िया और ऐसे गाने जो इस वक्त आपकी एनर्जी को बढ़िया बना रहे हैं। सिंगल टास्किंग, जी हाँ सिंगल टास्किंग पर जरा बात कर ली जाए। मैं मल्टी टास्किंग तो आपने बहुत सुना होगा ना। मल्टी टास्किंग वो लोग होते हैं जो एक ही वक्त में बहुत सारे कामों को अपने हाथों में ले लेते हैं। अब मल्टी टास्किंग लोगों की प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो वो सारे काम पूरे नहीं कर पाते, बाय चांस अगर कर भी लिए तो उनकी खुद की बैंड बच जाती है। इसलिए सिंगल टास्किंग बनिए, एक वक्त में एक काम को अपने हाथ में लीजिए और उसे पूरा करके ही दम लीजिए। 10 काम लेकर बीच में छोड़कर आगे बढ़ते जाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि एक काम को पूरा किया जाए, है ना। तो सिंगल टास्किंग एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, उसे जरूर अपनी लाइफ में उतारिए और मतलब वो करिए जो आप कर पाए। एक काम एक वक्त में ना आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लेता है और ना ही आपको डिस्टर्ब करता है, आपको फोकस रखता है एकदम, है ना। तो चलिए फिर सिंगल टास्किंग लोगों के नाम ये अगला ट्रैक है, इसे भी एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम।
1: इश्क और मोहब्बत की दुनिया में रुतबा है मेरे प्यार का, चारों तरफ जलवा है मेरे यार का।

सोचते हो दोस्तों कि अगर कुछ दिनों के लिए हमारे फोन को हमसे दूर कर दिया जाए तो क्या हम सांस ले पाएंगे? नहीं, मतलब किसी भी और बीमारी के आने से हमारी लाइफ में कहीं ज्यादा बेटर है, अगर ये आजमाना है कि लोग जी सकते हैं कि नहीं, तो सबसे बेटर काम है कि हमारे फोनों को हमसे छीन लिया जाए। देखना पड़ेगा कि कितने लोग जिंदा रह पाते हैं। और मैं ये भी सोचती हूँ दूसरी ओर कि अगर सोचिए, जैसे हमारी सबकी लाइफ में कोविड आया था ना एक वक्त में, वो वक्त भूले तो नहीं होंगे आप। वैसे ही कोविड जैसा कुछ ऐसा अगर आ जाए कि फोन को छूते ही आप बीमार पड़ जाएंगे, तो फिर क्या हम अपने फोन को छुएंगे, छूकर बीमार पड़ेंगे, या फिर उसे खुद से दूर रख पाएंगे? नहीं, मैं क्यों कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी सुबह की आंख ही हमारे फोन के साथ खुलती है। जनरली वो हमारे आसपास ही रहता है। रात में कई बार सोते वक्त भी हम लाइट जलाकर कभी टाइम के दर्शन कर लेते हैं, कभी नोटिफिकेशन के दर्शन कर लेते हैं। ठीक से हम सो भी नहीं पाते कि पता नहीं कौन सा नोटिफिकेशन हमसे मिक्स हो जाए। और मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले हमारा हाथ हम फोन पर जाता है, लाइट ऑन होती है, अधखुली आंखों से हम फोन को देखते हैं और बस चलाना शुरू कर देते हैं। और ये फोन जो है यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत बेहतरीन करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि सुबह कम से कम एक घंटा आपका ये फोन आपसे दूर रहे, इतना दूर जहां आप इसकी लाइट ना जला पाए, जहां आप ये ना देख पाए कि कौन से नोटिफिकेशंस आपकी विंडो पर दस्तक दिए बैठे हैं। ठीक है जी, चलिए इसी बात पर एंजॉय कीजिए अगला ट्रैक और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

एक वक्त, एक जमाना ऐसा था जब लोगों के घरों में लाइब्रेरीज हुआ करती थी। अपनी पसंद की बुक्स का कलेक्शन करना उन्हें अच्छा लगता था। आज कहीं ना कहीं हम बुक्स से बड़े दूर होते जा रहे हैं। ये पॉडकास्ट का जमाना और हमारी जिंदगी में आ गया, जिसके जरिए हम बहुत सारी चीजों को सुन लिया करते हैं और हम क्या कहते हैं कि यार पढ़ने का तो वक्त है नहीं, चलो सुन के ही चीजें हमें मिल जाती हैं। देखिए, लाइफ में जो चीजें आपकी बुक्स आपको सिखाती है ना, है ना, उनको जो आप मार्कर लेकर मार्क कर लिया करते थे कुछ लाइंस को, वो आपको कोई भी पॉडकास्ट नहीं सिखा सकता है, कोई भी पॉडकास्ट नहीं बता सकता है। पढ़ने से जो नॉलेज आती है वो सुनने से नहीं आती है। इसलिए पूरे दिन में कुछ एक वक्त ऐसा निकालें जब आप बुक्स पढ़ा करें। पहले भी लोग जब सोते नहीं थे ना, उनको जिनको नींद नहीं आती थी वो अक्सर बुक पढ़ा करते थे और उन्हें नींद आ जाया करती थी। अब तो हमें फोन देखते देखते ही फोन चेहरे पर गिर जाता है, तब हमें समझ में आता है कि हमारी आंखें रात में नींद से बंद हो रही हैं। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और इस वजह से शायद हमारी बहुत सारी हैबिट्स बदलने के साथ हमारा जो फोकस है वो चेंज हुआ है, हमारी जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब हुई है। तो सोचिए मेरी बात को और पढ़ने की आदत जरूर डालिए। कहते भी हैं कि बुक्स आपकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं, तो अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने से दूर मत कीजिए। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ इसी बात पर एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM।

सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड हम अपनी लाइफ में दोस्तों उस चीज को लेते हैं जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू हमारी लाइफ में है। जी नहीं, मैं इस वक्त कोई लव रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके दोस्तों की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ लाइफ की सबसे बेशकीमती चीज आपके वक्त की। आपके वक्त से ज्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। हर गुजरती घड़ी के साथ ये वक्त बीत रहा है और इस वक्त के साथ आपकी जिंदगी भी बीत रही है। तो यस, आपकी जिंदगी में वक्त से ज्यादा इम्पोर्टेंस और किसी चीज की नहीं है और सबसे ज्यादा वक्त आप जाया करते हैं, कभी सोशल मीडिया पे बैठ के, कभी उन इन्फॉर्मेशन को हासिल करने में अपने वक्त को लगा के जिनकी आपको नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। कई बार मैं देखती हूँ लोग विकिपीडिया देख रहे हैं, कई बार मैं देखती हूँ अननेसेसरी पेजेस देख रहे हैं, कई बार मैं देखती हूँ बेकार की खबरें जिनका कुछ लेना देना नहीं है, ना समाज से ना सोसाइटी से, लोग उन्हें भी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर हैं। तो देखिए, कोई जरूरत नहीं है अपने वक्त को जाया करने की उस किसी भी चीज में जहां पर आपका अपना टाइम खराब होता है, वो टाइम जो उससे आप प्रोडक्टिव बना सकते थे, जिसे आप किसी बहुत ही बेहतरीन काम में लगा सकते थे। मेरी बात पर सोचिएगा, मैं प्ले करती हूँ आपके लिए अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर दोस्तों।

तो भाई चलिए अभी बात कर लेते हैं इट हैपेंस में थोड़ी आपकी हेल्थ की। जी हाँ, हेल्थ के बिना इट हैपेंस अधूरा सा जो है, क्योंकि आपके हेल्थ हमारी मेन प्रायोरिटी, इनफैक्ट आपकी भी प्रायोरिटी है। तो जब भी मैं हेल्थ की बात करती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ कि भाई अपने फिजिकल बॉडी, अपनी मेंटल बॉडी और अपनी इमोशनल बॉडी का बहुत ख्याल रखिए। लेकिन वो क्या है ना कि एक ही काम अगर आपसे रोज कहूँ एक्सरसाइज कीजिए तो आप थक भी जाते हैं, बोर भी हो जाते हैं और फिर आप उसके लिए वक्त निकालना बंद कर देते हैं। देखिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका है आपकी इस प्रॉब्लम का मेरे पास में। कभी भी जब आप एक चीज रोज रोज करते हैं तो आप थक जाते हैं उससे, तो क्यों ना मंडे टू संडे या मंडे टू फ्राइडे ही सही, भाई चलिए वीकेंड्स मना लीजिएगा, तो अपने डेज के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज को सेट कर लें। जैसे आप मंडे को फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ट्यूसडे को आप डांस कर सकते हैं, वेडनेसडे को आप मेडिटेट कर सकते हैं, तो थर्सडे को आप योग कर सकते हैं। मतलब इस तरह से अगर हम अपनी चीजों को डिवाइड कर लें हर एक दिन के साथ, तो हमारी एनर्जी बनी रहती है, हमारा इंटरेस्ट बना रहता है और हमें मजा भी आता है। ट्राई कीजिए, आपकी परफेक्ट जो बॉडी है, मेंटल फिजिकल और इमोशनल, वो होने वाली है इन चीजों के साथ। ट्राई कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM मेरे साथ।

सुबह के साथ था ये मेरा आपके साथ एक और साथ। जी हाँ, इट हैपेंस में आप मेरे साथ थे दोस्तों। आज हमने बहुत सारी खूबसूरत और प्यार भरी बातें की, कई बेहतरीन बातों का जिक्र किया और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की एक मुमकिन कोशिश भी की। इसी कोशिश पर कल फिर से आपके साथ चलेंगे कुछ खास बातों, बेहतरीन गानों और खूबसूरत नगमों के साथ। लेकिन आज के सफर को अब ये वक्त है वाइंड अप करने का। सो आज के सफर से अब मुझे दीजिए इजाजत। हैव अ ग्रेट डे एंड यस ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वंसन ओवाने अंते जी आरजे संदेश औलक दराल से बने हुए। देखो हिंदी फिल्म या कोई भी फिल्म कह लो, पंजाबी कह लो, हिंदी कह लो या इंग्लिश कह लो, कोई भी फिल्म कह लो, हर फिल्म किसी ना किसी तत आधारित होंगी है। कोई नॉवल तो बनाई जाती है, किसी कोई किसी तो इंस्पायर होती है, कोई किसी की बायोपिक होंगी है, पर जड़िया नॉवल्स तो फिल्म बनाई जाए ना उन्होंने इंटरेस्ट थोड़ा जा डिफरेंट तरह का होंगे, तो स्पैशली लोगों के लिए जेडे नॉवल लवर होंगे जिन्होंने नॉवल्स बहुत पसंद होंगे। तो अज भी बहुत सारे दर्शकों के बसिया हुई ने फिल्मा जिहड़ियां नॉवल्स से आधारित हैगियां ने। हुण दीआं फिल्मां दी गल नहीं करूंगी मैं, पुरानियां दीआं करूंगी, क्योंकि पुरानियां फिल्मां दी तां गल ही कुछ होर हुंदी सी, जिहदे विच प्यार हुंदा सी, समाज इतिहास इंसानी भावनावां बहुत गहराई दे नाल ते खूबसूरती दे नाल पेश कीतियां जांदियां सी। एक एक करके दस्सदी उन्हां बारे, पर पहलां तुसीं इह गीत सुणो।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
4: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
4: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निःशुल्क है, और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

ना बदला मैं ना बदला वो ना बदला तू, अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कम वक्त, ये वक्त है बदला। पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की झप्पी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और हाउ आर यू फीलिंग टुडे? इट्स थर्सडे गाइस, थर्सडे आ गया है और वीकेंड जो है वो आने वाला है। मैं तो अभी से ही वीकेंड की खुशबू जो है वो हवाओं में फील कर सकती हूँ। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, वीकेंड की खुशबू भी होती है क्या? वेल, होती है, वाइब भी होती है, खुशबू भी होती है, वो मंत्र मुग्ध कर देने वाली अदा भी होती है वीकेंड में। लेकिन या अभी उसमें एक दिन और बाकी है, मतलब आज का दिन और कल का दिन। बट फ्राइडे को हम वीकडेज में थोड़ी गिनते हैं। फ्राइडे आता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे काम, कौन सा काम, कौन सा मैनेजर, कौन सा टीम लीड, कौन सा बॉस, हम किसी को नहीं जानते। हम तो बस जानते हैं इस जिंदगी में मजा किसे कहते हैं। जी हाँ, सो आइए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। और सबसे पहले आपको पता ही है, एक हेल्दी रिचुअल के साथ हम शुरुआत करते हैं जिसे हम प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी काम, वी वॉन्ट टू बी प्रोडक्टिव। एंड हम नहीं चाहते कि हमारे यू नो माइंड पर किसी भी तरह का कोई वजन रहे किसी भी चीज़ का। सो ये सारी चीज़ों से अपने आप को निजात दिलाने के लिए सबसे पहले लंबी गहरी सांसें यानी कि डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। वाह, जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ ट्राई कीजिए, बट आप सच में ट्राई कीजिए, बिकॉज देन यू गोना नो कि मैं क्या कह रही हूँ और मैं क्यों कह रही हूँ। जी हाँ, इसी के साथ बिना देर किए करते हैं शुरुआत प्रोग्राम की एक बहुत ही जबरदस्त से गाने के साथ, और उसका नाम है चले आना। ये गाना जो है वो बहुत ही खास है क्योंकि ये हमारे शाहरुख खान का गाना है, और आपको तो पता ही है जब शाहरुख खान आते हैं अदाएं दिखाने तो हम सब अपना दिल थाम कर बैठ कर देखते हैं। जी हाँ, यही तो शाहरुख खान की अदा है। जी हाँ, तो करते हैं शुरुआत प्रोग्राम की और फिर करते हैं और

जी दोस्तों, और इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। तो अब जरा सीधा चलते हैं, मौसम क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहे हैं बद्रा, क्या कह रही है बारिश, और क्या कह रहा है हमारे सूर्य जी। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर से, और वो रहा 24 डिग्री सेल्सियस के करीब। वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 22.6 डिग्री सेल्सियस के करीब है टेम्परेचर। फील ऑन द अदर हैंड आपको 22 डिग्री सेल्सियस के करीब हो रहा है, जो कि पिछले 3-4 दिनों में सबसे ज्यादा है। मतलब आज का दिन जो है वो पिछले 3-4 दिनों में सबसे ज्यादा गर्म है। तो अगेन मैंने कहा ही था आपको कि अब आपको गर्म दिन जो है वो मिलने वाले हैं एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए। और इसी के साथ ये तो थी दिन की बात, रात की बात की जाए तो 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे, और चांसेस ऑफ रेन 30%। लेकिन मुझे 7 बजे से बारिश होती हुई यहां पर थोड़ी सी नजर आ रही है, और अगेन बूंदाबांदी जो है वो आपको थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, वो भी कुछ इलाकों में। उसके अलावा मुझे बाकी सब ठीक नजर आ रहा है। एयर क्वालिटी है एकदम फेयर, और ये है आज के मौसम का हाल। बट ये तो आज का है, कल की अगर बात करें यानी कि फ्राइडे की और सैटरडे की, तो फ्राइडे को 20% चांसेस होंगे बारिश के विद 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। बट मैं आपको बता दूं कि आपको सूरज एकदम बिना बादल के नजर आने वाला है, मतलब एकदम बिना बादल, कोई भी छोटा सा भी बादल आपको नजर नहीं आएगा अंटिल अनलेस इसमें कोई बहुत ही मेजर चेंजेस आ जाए एकदम से। क्योंकि जितना मैं देख पा रही हूं उतना मुझे क्लियर मौसम दिख रहा है। सैटरडे को भी मुझे ऐसा क्लियर मौसम दिख रहा है, 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ मैक्सिमम 5% चांसेस मुझे यहाँ पे बारिश के दिख रहे हैं, और पूरी तरह से सूरज निकलता हुआ चमचमाता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, और ऐसा ही मुझे संडे और मंडे को भी नजर आ रहा है। सो बेसिकली अगले 4 दिन तक आपको कोई बारिश और किसी तरह के बादल परेशान करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। बाकी कुछ फेरबदल हो जाए तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे ये बारिश है, ये नेचर है, और ये अपनी ही मजे में और अपनी ही अदा में चलता है, इसे हम नहीं रोक सकते। दैट्स अबाउट इट, ये है मौसम का हाल। और इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए, जो कि थोड़ा मस्ती और मटर गस्ती करने पर आपको मजबूर करने वाला है। व्हाई एम आई सेइंग दैट, वेल आप गाना सुनिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा।

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੁਐਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਯੋਰ ਸੈਂਸਸ ਔਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 11th ਆਫ ਆਗਸਟ 2026. Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorized by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओमसॉक से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेंबर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार्जे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। मौसम का हाल चाल भी हमने आपको बता दिया है और अब जरा चलते हैं आपकी फरमाइशों के बारे में आपको बता देते हैं। जी हाँ, और फरमाइशों से हमारा मतलब वही है जो आप सोच रहे हैं, मतलब आपके फेवरेट पसंदीदा गाने। आप यहाँ हमारे इस प्रोग्राम इवनिंग वाइब में फरमाइश कर सकते हो एंड मैं यानी कि आपकी आरजे निव्या उन्हें आपके लिए प्ले करूंगी। इनफैक्ट आप किसी को खास भी फील करवा सकते हो, उन्हें कोई खूबसूरत सा गाना डेडिकेट कर, और आई एम गोना हेल्प यू विद दैट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। नंबर है +91 8288 71701। आई रिपीट +91 8288 71701। तो बस फिर जल्दी से आ जाइए, फरमाइश कर दीजिए, गाना भी डेडिकेट कर दीजिए और नंबर डायल कीजिए और कॉल व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू हमें अपनी फरमाइश भेज दीजिए। हमें इंतजार और यहाँ पर हमारी तरफ से एक और बहुत ही जबरदस्त सा गाना एकदम ढम ढम ढम ढम करवा देगा आपको। क्यों? वेल, आप खुद ही सुनिए, आपको पता चल जाएगा।

0: दी।
1: जी दोस्तों, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत की है, उसके बाद ब्रिटेन ने उसे आगे बढ़ाया, उसके बाद दुबई ने उसे आगे बढ़ाया और अब यूरोपियन कंट्रीज में पहली कंट्री फ्रांस बन गई है, जो कि अपने माइनर्स की, जो कि अपनी कंट्री के बच्चों का ख्याल रखने के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, उनकी ग्रोथ में कुछ भी गड़बड़ ना हो उसके लिए, वो भी 15 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सो पर्शियन बैग्ड लॉ मेकर्स ने जो है इस चीज को प्रपोज किया है, एंड अगेन सोशल मीडिया एक्सेस नहीं कर पाएंगे बच्चे, कंटेंट नहीं बना पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना भेज पाएंगे, कुछ भी वो नहीं कर पाएंगे, ना अपनी कोई आईडी बना पाएंगे। इनफैक्ट अगर वो कोशिश भी करेंगे तो भी वो पकड़े जाएंगे। जी हाँ, सो पहले आपने देखा कि हमारी कंट्री ने शुरू किया, फिर उसके बाद ब्रिटेन ने उसे आगे बढ़ाया, फिर मैंने जैसे आपको बताया कि दुबई ने भी ये किया, अब यूरोपियन कंट्रीज में पहली कंट्री फ्रांस बनने जा रहा है। सो यू कैन ओनली इमेजिन। नाउ व्हेनेवर वी थिंक अबाउट इट, हमें ऐसा लगता है कि okay, मतलब ठीक है, अगर नहीं भी करते तो चल जाता, बट देयर आर सम पेरेंट्स जो कि बहुत ज्यादा कंसर्न रहे हैं इस केस में, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजों से एक्सपोजर जो है वो बच्चों का हो जाता है इफ दे कैन एक्सेस सोशल मीडिया, और बहुत कम उम्र में। नो मैटर कितना भी हम पेरेंट्स जो हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश करें, जो पेरेंट्स होते हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश करें, बट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है वो भूल हो जाती है, और उस वजह से जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत सारी ऐसी मलिशियस चीजों का भी शिकार बन जाते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। नाउ ऑफकोर्स इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होता है, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म जहां से बहुत सारे लोग जो है वो छोटी उम्र में ही कमाई करना शुरू कर दे रहे हैं, फिर चाहे वो रील्स हो, एडवर्टीजमेंट्स हो या एनीथिंग, बट यहां पर ये सब चीजों को पीछे रखते हुए और उस रेवेन्यू को भी अनदेखा करते हुए ये कंट्रीज ऐसा स्टैंड ले रही है जो कि काफी गजब का स्टैंड है। नाउ आई एम ऑल इन फॉर इट। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक एज, एक अप्रोप्रिएट एज के बाद ही कुछ चीजों से जो है वो हमारा एक्सपोजर होना चाहिए, एंड आई थिंक सोशल मीडिया बीइंग वन ऑफ दोज थिंग्स। सो लेट्स सी अगली कंट्री कौन होती है इस लाइन में, बट फ्रांस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि बहुत ही खूबसूरत है।

जी दोस्तों, अर्ज के साथ अब बिना देर किए हुए यहाँ पर एक फरमाइश जो है वो प्ले करने का वक्त आ गया है। और ये फरमाइशी गीत जो आया है वो हमारे एक बहुत ही खास लिसनर का आया है, जी हाँ, जनक जी का। और जनक राज जी की ये फरमाइश है, गाने का नाम है तुम अगर साथ देने का वादा करो। जी हाँ, अब ये महेंद्र कपूर जी का गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है और इट्स अ कल्ट फेवरेट सॉन्ग। मतलब मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द सॉन्ग इज रियली रियली सो गुड कि आप बोलोगे वाह क्या खूबसूरत है। फिर चाहे इसके लिरिक्स हो, इसका म्यूजिक हो या महेंद्र कपूर जी की गायकी हो, मतलब सब एकदम लाजवाब है। तो सबसे पहले जनक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस फरमाइश के लिए। बट नहीं नहीं अभी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल फरमाइश नहीं है, ये एक डेडिकेटेड सॉन्ग है जो कि उन्होंने अपने क्रिकेट क्लब के लिए जो है वो डेडिकेट किया है, फ्री क्लॉबन के लिए। और यहाँ पर हम उनको आपकी तरफ से ये डेडिकेट कर रहे हैं। ये खूबसूरत सा गाना फ्री क्लबन आप सबके लिए। और यहाँ पर थैंक यू सो मच जनक जी, हमेशा खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए और हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब आप कल से कर रहे हैं एंड वी आर लविंग इट। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
10: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
11: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
12: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
11: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
12: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
11: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
12: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
13: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
14: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज निविया के साथ। दोस्तों आपको तो पता ही है कि आजकल जेंडर रिवील जो है वो बहुत ज्यादा फैंसी हो गया। सो बेसिकली दो चीजें बहुत ही ज्यादा फैंसी हो गई हैं, पहली प्रपोजल्स, जी हाँ वेडिंग प्रपोजल्स, और दूसरा जेंडर रिवील्स, मतलब क्या बच्चे का जो है वो क्या जेंडर होने वाला है, क्या होने वाला है, इज इट अ बॉय, इज इट अ गर्ल। जी हाँ, इससे और भी ज्यादा स्पेशल और भी ज्यादा यूनिक बनाने के लिए लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा यूनिक तो नहीं हो सकता जेंडर रिवील, क्योंकि इसमें इतना बड़ा सुपरस्टार जो इन्वॉल्व है। जी हाँ, सो बेसिकली इंटरनेट यानी कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर टेनिस स्टार नोवाक जोकोविक ने एक वीडियो शेयर की है जहां पर जी हाँ उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है एक पेरेंट्स के जेंडर रिवील में, एक कपल के जेंडर रिवील में। जी हाँ, और ये है स्टोरी विंबलडन की। जी हाँ, सो आफ्टर विंबलडन वहां पर एक कपल जो है वो बैठा हुआ था, वो नोवाक जोकोविच को बुला के कहता है कि सर कैन यू हेल्प अस विद समथिंग, एंड जोकोविच वर लाइक ओके या आई कैन, व्हाट डू यू वांट, and they were like you know what I want you, we want you to help us with our gender reveal so it can be you know so memorable that jo bhi hamara jo bachcha hoga use hamesha wo yaad rahe। Novak Djokovic kehte hain ki ha theek hai, I can help you with that but you tell me what do I need to do। So wo एक पेपर जो है वो नोवाक जोकोविच की तरफ जो है वो फेंकते हैं, पास ऑन करते हैं उनको, और उनको कहते हैं कि अब आप हमें बताओगे इसमें पढ़ के कि इज इट अ बॉय और इज इट अ गर्ल. जी हाँ, सो जोकोविच बहुत ही अच्छे से कहते हैं ओके कूल आई एम गोना डू दैट, एंड वो पेपर को जो है अनफोल्ड करते हैं, वो पढ़ते हैं और फिर वो कपल को बताते हैं कि इट्स अ गर्ल. जी हाँ, और जो कपल होता है वो खुश हो जाता है, आजू बाजू के जो लोग हैं वो सब खुश हो जाते हैं. पीपल वर लाइक कि वाओ, अगर हमारा जेंडर रिवील, हमारे बच्चे का जेंडर रिवील जो है अगर हमारा स्पोर्ट्स आइडल करेगा तो इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या होगी. मतलब उस बच्चे के लिए भी कितनी मेमोरेबल बात होगी कि यू नो व्हाट, तुम्हारा जेंडर रिवील नोवाक जोकोविक ने किया था खुद. जी हाँ, खुद उन्होंने किया था. आई मीन इट्स सो मेमोरेबल, राइट? सो या आई गेस द मोस्ट यूनिक एंड द मोस्ट मेमोरेबल जेंडर रिवील वाला जो खिताब है वो इस कपल को मिल गया, क्योंकि इन्होंने सही टाइम पे सही सिचुएशन का फायदा उठा के नोवाक जोकोविक को अपने बच्चे के जेंडर रिवील में कर लिया है शामिल, और ये मेमोरी जो है वो कभी भी फेड नहीं होगी. जी हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से नहीं, एक फरमाइशी गीत, और ये फरमाइशी गीत आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से फ्रॉम ऑल द वे टू शिकागो. एंड यहाँ पर जो है ये खूबसूरत सा गाना जो उन्होंने किया है वो है और क्या. जी हाँ, ये खूबसूरत सा गाना है शाहरुख खान और जूही चावला का, और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का ये गाना है. तो सीधा भाई शिकागो से आई है फरमाइश, हम कैसे प्ले नहीं करेंगे. जी हाँ, थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए, प्यार देने के लिए हमारे प्रोग्राम को. ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ हम आपको बताते हैं क्या क्या आप नया देख सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ नया है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉलीवुड पार्ट ऑफ इट। जी हाँ, तो अगर आपकी वॉच लिस्ट जो है बहुत एम्प्टी हो गई है और आपको समझ नहीं आ रहा कि ओके इस वीकेंड क्या करने वाला हूँ मैं या करने वाली हूँ, सो थोड़ा सा आपको बता दें हम क्या क्या आप कर सकते हैं और OTT पे आप क्या देख सकते हैं अभी और इस वीकेंड। सबसे पहले आप इनोला होम सीजन 3 देख सकते हैं। जी हाँ, मिली बॉबी ब्राउन जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स की लिटरली करता धरता रही है, मतलब द लेडी ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स, उनकी जो है ये सीरीज जो है वो आप देख सकते हैं। सीजन 3 जो है वो आ गया है और यहाँ पर आपको हेनरी कैविल भी जो है वो किडनैप हुए मिलेंगे और ये क्या है मामला पूरा का पूरा, ये आपको तभी समझ आएगा जब आप इसे देख पाएंगे। जी हाँ, सो इनोला होम्स 3 सीजन 3 आप देख सकते हैं। इसके अलावा द शीप डिटेक्टिव, जी हाँ, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप लोग ह्यूग जैकमैन यानी कि द वुल्वरीन के फैन हैं, देन द शीप डिटेक्टिव्स आपको देखना चाहिए। ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही जबरदस्त शेपर्ड के बारे में है जिसमें ह्यूग जैकमैन जो है उस शेपर्ड का कैरेक्टर जो है किरदार जो है वो निभा रहे हैं और उनका मिस्टीरियस मर्डर हो जाता है और उसको सॉल्व करने के लिए उनकी शीप्स जिनके सामने जो उनकी शीप्स थी जो ह्यूग जैकमैन की जो शीप्स थी उनको डिटेक्टिव गिरी वो सिखा कर गए होते हैं। मतलब वो नॉर्मल डिटेक्टिव गिरी करते थे लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी भेड़ों को जो है वो समझ नहीं आता लेकिन उनकी भेड़ें सबको समझती थी। तो जब वो एकदम से गायब हो जाते हैं, उनका मर्डर हो जाता है और अथॉरिटीज जो है वो अच्छे से उसे सॉल्व नहीं कर पाती हैं, तो वही भेड़ें जो ह्यूग जैकमैन की होती हैं वो खुद डिटेक्टिव गिरी करती हैं और खुद जस्टिस जो है वो दिलाती हैं। इमेजिन, इट्स सच अ कूल टॉपिक, राइट। यहां पर ये भी आप देख सकते हैं। इसके साथ द बेयर का सीजन 5 आ गया है और लॉन्ग वेट जो है वो आपको एक साल का करना पड़ा और उसके बाद इसका फाइनल सीजन जो है वो आ गया है। अगेन आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा स्टार सिटी भी आप देख सकते हैं इफ यू आर अ फैन ऑफ साईफाई कॉन्सेप्ट, स्पेस एंड ऑल द थिंग्स। सो या, इट्स अ स्पिन ऑफ फॉर ऑल मैनकाइंड और ये साईफाई सीरीज जो है वो इमेजिन करती है अ वर्ल्ड वेयर द सोवियत यूनियन रीचेस द मून फर्स्ट और फिर उसके बाद क्या होता है, वेल यू नो वेरी वेल आप क्या क्या देख सकते हो। सो या, ये सब आप देख सकते हैं और इसी के साथ आप एक और चीज कर सकते हैं और वो हमारे प्रोग्राम में एक और जबरदस्त सा गाना आप सुन सकते हैं क्योंकि हम आपके लिए वो प्ले करने वाले हैं और ये खूबसूरत सा गाना जो है वो होने वाला है तेरे दिल में जरा सी जगह आप सबके लिए।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
5: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
4: अरे वाह, इनका पता बताना.
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
6: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. तो दोस्तों, गपशप तो हो रही है और बहुत सारी चीजों के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं. और मैंने आपको जो रिकमेंडेशन दिए हैं हॉलीवुड सीजन्स के या सीरीज के या मूवीज के, उसे जरूर देखिएगा. और इसी के साथ अब यहाँ पर जन्मदिन मुबारकबाद देने का वक्त आ गया है हिमेश रेशमिया को. जी हाँ, हिमेश रेशमिया को हम यहाँ पर जन्मदिन मुबारकबाद देंगे सबसे पहले, क्योंकि आज है उनका बर्थडे और उन्होंने हमें लिटरली एक वक्त में दीवाना बना दिया था, और वो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से. मतलब आशिक बनाया, झलक दिखला जा, क्या कहूं मैं इनके गानों के बारे में. सो या, हिमेश रेशमिया का है आज जन्मदिन. और यहां पर मैं इतना ही कहना चाहेंगे कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिजवानी की तरफ से. और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा सक्सेस लेकर आए. हेल्दी आप रहें, वेल्दी भी आप हो ही ऑलरेडी, पर और ज्यादा वेल्थ जो है वो इंक्रीज हो, ये सारी की सारी दुआएं हम आपके लिए कर रहे हैं आपके आज जन्मदिन में. और या ऐसे ही ये साल आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहे और खुशनुमा रहे. यहाँ पर एक गाना, अब हिमेश रेशमिया की बात हमने की है तो ऑफ कोर्स उनका गाना जो है वो प्ले करना पड़ेगा. और ये गाना जो है वो मुझे काफी पसंद है, सो आई गेस दिस इज माय फरमाइश फॉर माय सेल्फ. जी हाँ, यहाँ पर ये गाना आप सबके लिए.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है खबरों की तरफ रुख करने का। जी हाँ, मतलब पॉलिटिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, एंड अगेन अब वॉर फ्रंट पे क्या हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत की मुख्य खबर से। जी हाँ, ऑफकोर्स वो है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से रिलेटेड, जो सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक के मामले में किया है। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि कुछ भी करो, लोग जंतर मंतर आकर रहेंगे। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इनके सपोर्ट में आ गए हैं। दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद किए जाने पर कॉकरोच जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने इन स्टेशनों को बंद करने की सूचना पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इसका क्या मतलब है, मोदी जी सीधे धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए और मामले को खत्म करिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने लिखा कि मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का ये रोज रोज का ड्रामा क्यों, कुछ भी करो, लोग जंतर मंतर पर आकर रहेंगे। नीट पेपर लीक के मामले के खिलाफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को एक महीने से ज्यादा हो चुका है। यहां इसके समर्थन में हजारों युवा पहुंच रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में यहां पुलिस और युवाओं के बीच टकराव भी देखने को मिला है। जी हां, वहीं इसके लिए मतलब नीट पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़े पीएम के बयान पर कांग्रेस ने कुछ कहा है, विच आई एम गोना टेल यू। बट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट है। मतलब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे जिससे कि जो भी पेपर लीक के पीछे जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो सजा मिल सके, जस्टिस जो है वो हो सके उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस पेपर की तैयारी की थी और जिन बच्चों ने डिप्रेशन में आके अपनी जान गंवा दी पेपर लीक होने की वजह से, ताकि जस्टिस प्रिवेल हो सके। लेकिन उसका सॉल्यूशन किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं बल्कि फास्ट ट्रैक कोर्ट है, और हमने यहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो ला दिया है और इससे आपको काफी मदद मिलने वाली है। बट कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि ऐसे नहीं चलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं काम करेगा, हम जो चाहते हैं वही होगा। मतलब कि आपको धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनको देना पड़ेगा इस्तीफा। अब गवर्नमेंट क्या बेवकूफी कर रही है अपने एक मंत्री की वजह से पूरे के पूरे स्टूडेंट से पंगा लेकर, वेल ये तो वक्त ही बताएगा। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंची हुमा कुरैशी। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी तस्वीर डालते हुए लिखा कि बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंची। ये जनता का आंदोलन है, न्याय और जवाबदेही की मांग के लिए हम सभी को एकजुट होकर इसका साथ देना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को किसी और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपना समर्थन दे रहे हैं। वहीं कमल हासन ने भी कुछ कहा है। जी हाँ, उन्होंने मशहूर अभिनेता कमल हासन ने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और उसके समर्थकों से भावुक अपील की है। कमल हासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमें तभी सुन लेना चाहिए था जब एक बच्चा रोया था, लेकिन हमने तब तक इंतजार किया जब तक हमारे बहुत से बच्चों की जान नहीं चली गई। ऐसी व्यवस्था जिसमें पढ़ाई की जगह कोचिंग, जिज्ञासा की जगह चिंता और योग्यता की जगह अपराध ने ले ली हो, वो पूरी तरह सड़ चुकी है। उन्होंने लिखा, जब किसी देश के बच्चों को जवाब देने के बजाय बैरिकेड और लाठियां मिले तो ये उस देश की विफलता है। सोनम वांगचुंग, आने वाले समय में इस देश को आपकी नैतिक आवाज और मार्गदर्शन की जरूरत होगी। कृपया अपना अनशन समाप्त कर दीजिए। भारत के बच्चों से बस इतना कहना है कि आप हम सब में सबसे बेहतर हैं। आपने अपना कर्तव्य निभाया है, अब देश की बारी है कि वो आपके प्रति अपना कर्तव्य निभाए। ईश्वर करे आपके अपने आपके सपने हमेशा हमारी विफलताओं से बड़े रहें। जी हाँ, ये कहा गया है कमल हासन के द्वारा।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: डिजिसेल, बेटर टुगेदर।
4: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
5: Priya, next month mama ka birthday. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
6: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
6: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
6: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
7: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार श्रीनिव्या के साथ। दोस्तों, खबरों की बात हो रही है और वहीं अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे परमाणु समझौता, पर ऐसे समझौते या ऐसी डील्स तो ये ईरान को करने नहीं दे रहा है, फिर सऊदी अरेबिया के साथ क्यों? वेल, सब कुछ हो जाता है जब आपके फायदे की चीज हो रही होती है। जी हाँ, अमेरिका और सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से खाड़ी का ये देश अपना नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित कर सकेगा। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार ये शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता है। इसके तहत अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर काम करने का अवसर मिलेगा। समझौते का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक भविष्य में इसके तहत सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिल सकती है, मतलब यूरेनियम एनरिच करने की जो है वो अनुमति मिल सकती है। संवर्धित यूरेनियम यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बिजली घरों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। हालांकि इसी तकनीक का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए भी किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ऐसा होता है तो ये अमेरिका की ओर से पहली बार होगा। इससे पहले से ही अस्थिर पश्चिम एशिया में परमाणु हथियारों के प्रसार का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने बताया कि परमाणु सहयोग समझौते के साथ एक द्विपक्षीय सुरक्षा निगरानी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। वेल, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन सऊदी अरब पे या सऊदी अरब पे इतना विश्वास करना कि वो सिर्फ और सिर्फ बिजली ही बनाएंगे उससे, या ऊर्जा ही बनाएंगे, या एनर्जी ही बनाएंगे, बल्कि उसे बम में तब्दील नहीं करेंगे, ये थोड़ा फार फेस्ट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

पक्की हैं, अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और अगर आपने बिल्कुल बॉटम से शुरुआत करके एकदम आसमान को छू लिया हो, तो आपकी चर्चा, आपकी प्रशंसा हर दुनिया का हर एक इंसान करेगा जो आपको जानता है। जी हाँ, सो ऐसा ही कुछ हुआ जब जेसन हुआंग जो कि एनविडिया के सीईओ हैं, उसके मालिक हैं, उनकी जैकेट, जी हाँ, आपने नहीं देखी उनकी जैकेट? वेल ऑफ कोर्स आपने क्यों नहीं देखी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता आपने जेसन हुआंग को देखा हो और आपने उन्हें जैकेट में ना देखा हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी एक क्लासिक ब्लैक लेदर जैकेट में रहते हैं। आप लोग बोलोगे ओह माय गॉड निविया, टेल मी द ब्रांड नेम। वेल, ब्रांड नेम की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रांड चाहे छोटा हो बड़ा हो, जब से उस ब्लैक लेदर जैकेट को जेसन हुआंग ने पहन लिया है, लोग उनके फैन हो गए। मतलब एक ऐसा सीईओ जो कि ब्लैक लेदर जैकेट पहनता है और ऐसी बातें करता है जो लोगों के दिल को मोह ले, जी हाँ, मतलब उनको ऐसे इंस्पायर करते हैं जेसन हुआंग जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर किस्सा बहुत ज्यादा वायरल हुआ जब उनकी वही जैकेट जो उन्होंने बहुत सारे AI अनाउंसमेंट्स के लिए पहनी थी, जी हाँ, वो फेमस ब्लैक जैकेट जो उन्होंने पहनी थी काफी सारे बड़े बड़े इवेंट्स के लिए, उसका ऑक्शन हुआ। जी हाँ, आप लोग बोले हैं जैकेट का ऑक्शन हो गया, कितने की बिक गई होगी? जी हाँ, आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि उसे मिले हैं ऑलमोस्ट $1 million, मतलब ऑलमोस्ट $1 million की ये जैकेट बिकी है, जो कि बहुत ही जबरदस्त रकम है किसी भी एक जैकेट के लिए। मतलब आपने पहले भी बड़ी बड़ी चीजें और बहुत ही आर्टिस्टिक चीजें ऑक्शन होते हुए देखी होंगी, जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा प्राइस पे करते हैं, मतलब पिकाचू कार्ड्स के लिए करते हैं और पोकेमोन कार्ड्स के लिए करते हैं, या बहुत वेयर चीजों के लिए भी करते हैं। लेकिन एनविडिया के सीईओ ने प्रूव कर दिया है कि उनकी पहनी हुई जैकेट की कीमत किसी भी बड़े आर्टिस्टिक वर्क से कम नहीं है। जी हाँ, मतलब आप खुद सोच सकते हो कि एनविडिया सीईओ जेसन हुआंग की वो आइकॉनिक ब्लैक लेदर जैकेट, वो अस्टॉनिशिंग ऑलमोस्ट $1 million उसने अचीव किया है एट सॉथबे ऑक्शन। जी हाँ, सो ये ऑक्शन जो है वो प्रोसीड, इसकी जो ऑक्शन की जो प्रोसीड होंगी विल सपोर्ट फेलोशिप ग्रांट्स एंड इनोवेशन प्रोग्राम्स फॉर यंग साइंटिस्ट रिसर्चर्स एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स। सो ऑफकोर्स ये कोई ऐसा ही नॉर्मल सा ऑक्शन नहीं था, और ये ऑक्शन की जो रकम है किसी एक इंसान की जेब में नहीं गई है, ये ऑक्शन की रकम जो है वो उन लोगों के लिए काम करेगी, उन एम्बिशियस साइंटिस्ट के लिए काम करेगी, उनके लिए पे करेगी जो कि किसी भी फील्ड बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो कि ग्राउंड वर्क से शुरू करेंगे, मतलब लिटरली बॉटम से शुरू करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें अचीव करना चाहते हैं। और यहां पर जेसन हुआंग ने प्रूव कर दिया है कि वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, मतलब एक लेदर जैकेट, एक लेदर ब्लैक लेदर जैकेट, ऑलमोस्ट $1 million, That's a hefty sum of money, right? यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि बहुत ही जबरदस्त है।

0: ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਖ ਰੋ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
1: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
0: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਵੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
3: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
4: Yes baby, but no compromise with
5: Just move from overseas. Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि इंसान कितना भी दिमाग लगा ले, ये जो प्यारे प्यारे जो बेजुबान क्रीचर्स है ना, ये अपना दिमाग लगाकर कुछ ऐसा फनी और यूनिक कर देते हैं कि हम लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है इंटरनेट पर, जहां पर एक 6 फुट बड़ी लंबी मॉनिटर लिजर्ड जो है उसने रेड कर दिया एकदम से कन्वीनियंस स्टोर को, और वहां पर खुद ही शेल्फ पे चढ़ चढ़कर उसने अपना खाना ढूंढना शुरू कर दिया। शी वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई कांट वेट फॉर फूड टू कम, आई हैव टू गो एंड ग्रैब दैट। जी हाँ, शी वाज लाइक दैट। बट अगेन, जब उस इतनी बड़ी जाइगेंटिक छिपकली को, लिजर्ड को लोगों ने वहां पर देखा कन्वीनियंस स्टोर में, पीपल वर लाइक ओ माय गॉड, नहीं नहीं हमारी भूख मर गई है, हमको नहीं चाहिए कुछ, हमको कुछ नहीं खरीदना, हमको यहाँ से भागना है। लाइक लिटरली पीपल पैनिक्ड। लेकिन आपको तो पता ही है, सोशल मीडिया के जमाने में पैनिक जो है वो सबसे बड़ी चीज नहीं है, बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करना सबसे बड़ी चीज है। जो हाँ, तो वहां पे बहुत सारे लोग थे जो वहां से भागे, लेकिन कुछ तूफानी लोग ऐसे भी थे जिनको ऐसा लग रहा था कि यू नो व्हाट, ऐसा मोमेंट कभी नहीं आएगा, फिर तो जस्ट ग्रैब इट। उन्होंने अपना फोन निकाला, कैमरा ऑन किया और फटाफट उस वीडियो को कैप्चर करने लगे। एंड दैट्स हाउ वी गॉट टू नो अबाउट द इवेंट, बिकॉज अदरवाइज हम थाईलैंड में तो रहते नहीं है, और अदरवाइज हम उस कन्वीनियंस स्टोर में भी नहीं गए थे, तो अदरवाइज हमें ये पता भी नहीं चलता कि वहां पर, यानी कि थाईलैंड के एक कन्वीनियंस स्टोर में, एक बहुत बड़ी जाइगेंटिक छिपकली आ जाती है और वो खुद ही अपना खाना ढूंढने लग जाती है। बट ऑफ कोर्स कूडोस टू दोज क्रिएटिव पीपल, जो कि हर कोई ऐसी खतरनाक सी चीज देखकर भागने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अपना फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। यू नो व्हाट, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दोज पीपल। लाइक लिटरली, वी रिस्पेक्ट यू, वी रिस्पेक्ट यू। मतलब कितनी बड़ी बात है, राइट? मतलब कितनी खतरनाक बात है कि आप वो सब भूल कर ये सोचते हो कि ये वायरल मोमेंट तो चला जाएगा अगर मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। सोया। फिर उसके बाद जो है वो वाइल्ड लाइफ वाले आते हैं, वाइल्ड लाइफ हैंडलर्स आते हैं और वो उसको जो है वो फटाफट वहां से खदेड़ने की कोशिश करते हैं। बेचारी अपने लिए दो चार प्रोडक्ट्स ही तो ले रही थी, क्यों नहीं लेने दिया उसको। फिर उसको लेकर चला जाया जाता है वहां से और वो छिपकली भी सोच रही होगी कि क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है इंसानों के साथ, मैं सिर्फ अपना खाना लेने गई थी वहां पे, मैं दो चार चीजें ग्रैब करने वाली थी और मैं निकल जाती अपने रास्ते। बट यू नो व्हाट, इंसान ये अलाउ नहीं करेंगे। इंसान क्या अलाउ करेंगे? वेल ऑफ कोर्स एक वायरल मोमेंट। जी हां, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से। That's right.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपके फेवरेट सेगमेंट का, और ना सिर्फ आपके बल्कि मेरे भी फेवरेट सेगमेंट का। एंड मैं बात कर रही हूँ ऑफ कोर्स ओल्ड इज गोल्ड की। नाउ ओल्ड इज गोल्ड इज सच अ स्पेशल सेगमेंट कि जब भी आता है हम सारे ऐसे हो जाते हैं, ओह क्या बात है, वो खूबसूरत गाने चलने वाले हैं, जबरदस्त किस्से भी आरजे निवा सुनाने वाली है। वेल आई होप आपको ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मुझे सच में बहुत मजा आता है इस सेगमेंट के दौरान। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, जल्दी से आ जाइए आप भी अपनी फरमाइशों के साथ। बस शर्त यही है कि आपका जो गाना होना चाहिए वो होना चाहिए पुराना, क्योंकि अब ये तो भाई पुराने गानों का ही वक्त है। जी हाँ, सो जो गाना सबसे पहले इस सेगमेंट में वो आपके लिए प्ले करने वाली हूँ वो मेरा फेवरेट गाना है। जी हाँ, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स में से है, और गाने का नाम है लिखे जो खत तुझे। जी हाँ, आपने सही सुना, लिखे जो खत तुझे। नाउ अगेन आई एम गोना टेल यू अबाउट द स्टोरी, बट आपने ये आई थिंक 100 बार सुन ली होगी, बट जो मेरे नए लिसनर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि ये गाना मेरे लिए इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज व्हेन आई वाज 5 आई हर्ड दिस सॉन्ग। मैं अपना खेल रही थी, मैं सब 5 साल की थी, और मैं अपना खेल रही थी और मेरे दादाजी इस गाने को सुन रहे थे। गेस व्हाट, 5 साल के बच्चे को एक गाने से प्यार हो जाता है और वो यही गाना होता है। तब मुझे नहीं पता था इस गाने को किसने गाया, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कौन सी मूवी का गाना है, और तब मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें जो एक्टर है वो शशि कपूर है और वो इतना हैंडसम है। बाद में पता चला, बट द थिंग इज कि पहला impression, first impression was the last impression. I fell in love with this song. I was like, wow, what? मतलब मुझे वर्डिंग इतनी खूबसूरती से समझ आ गई, क्योंकि इसके शब्द जो है वो इतने सुलझे हुए हैं, इतने आसान से शब्द हैं, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। सो मतलब कितना खूबसूरत गाना है, राइट? सो या दैट्स हाउ आई फेल इन लव विद दिस सॉन्ग व्हेन आई वाज जस्ट 5, या एंड दैट्स हाउ आई फेल इन लव विद शशि कपूर एंड रफ़ी साहब्स वॉइस। जी हाँ, सुनते हैं इस गाने को और भी करते हैं और भी बातें।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक गाना चूज करना है जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से पिक्चराइज किया गया हो और जिसमें उस एरा की कोई एक्ट्रेस ने इतना खूबसूरत तरीके से परफॉर्म किया हो कि आप उसके कायल बन गए, जी हाँ, आप लोगों के दिमाग में अलग अलग गाने आएंगे, ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस आएंगे. किसी को जब प्यार किया तो डरना क्या अच्छा लगेगा, किसी को कजरा मोहब्बत वाला अच्छा लगेगा, किसी को कोई और गाना अच्छा लगेगा. बट अगर मैं आपको कहूँ कि एक गाने को बहुत सारी एक्ट्रेसेस का वोट मिला था तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, काफी सारी एक्ट्रेसेस का, फिर चाहे वो आशा पारेख हो, फिर चाहे वो मौसमी चटर्जी हो, फिर चाहे वो पूनम ढिल्लो हो, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने इस गाने के बारे में कहा है कि इस गाने में मुमताज ने इतना खूबसूरत परफॉर्म किया है, जैसे वो डांस कर रही है, जैसी वो अदाएं दिखा रही है, वो काबिले तारीफ है. क्या आप गेस कर सकते हैं मुमताज का वो कौन सा गाना है जिसके बारे में ये सारी की सारी लेडीज ने बात की है? Well, वो गाना है बिंदिया चमकेगी. जी हाँ, चूड़ी खनकेगी. और ये खूबसूरत सा गाना जो है ना, वही है जिसके बारे में बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने कहा था. उन्होंने कहा था कि इसमें एक तो मुमताज लग ही बहुत ज्यादा खूबसूरत रही थी, वो संतरी कलर की साड़ी, ऑरेंज कलर की साड़ी, और वो गजरा बालों में, और उनकी वो अदाएं, और जैसे वो डांस कर रही है, और जैसे उसके लिप सिंकिंग की गई है. जी हाँ, आशा पारेख ने तो स्पेशली ये तक कह दिया था कि जिस हिसाब से मुमताज ने इस गाने की लिप सिंकिंग की है वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है. एंड दैट इज द रीजन आई लव मुमताज इन दैट सॉन्ग. सो सुनते हैं गाने को और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें.

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com the one stop bollywood fashion and entertainment store well known for its quality service and reasonable prices
2: some numbers carry weight beyond what you see q1170 the master number of vedic tradition a heritage queensland plate First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज निव्या के साथ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कुर्बानी आप में से कितने लोगों ने देखी है। जी हाँ, जिसमें जीना तमान है, जिसमें विनोद खन्ना है, जिसे बनाया है फिरोज खान ने। जी हाँ, वही फिरोज खान जिनका स्टाइल और खूबसूरती की तारीफें काफी सारी एक्ट्रेसेस करती आई है। एंड कहना पड़ेगा गुड लुकिंग तो फिरोज खान बहुत ज्यादा थे, डेफिनेटली। तो ये किस्सा जीना तमान सुनाती हैं कि कुर्बानी मूवी की शूटिंग हो रही थी और कुर्बानी का जो है वो एक लास्ट सीन शूट हुआ और उसमें फिरोज खान ने अपनी बहुत ही खूबसूरत मर्सिडीज एस क्लास जो है वो लेकर आए, मर्सिडीज जो है वो गाड़ी लेकर आए और उसको उन्होंने चकनाचूर कर दिया अपने एक सीन को शूट करने के लिए। उन्होंने अपनी खुद की गाड़ी बाय द वे यूज की उसके लिए। जी हाँ, तो जब वो ये किस्सा बता रही थी, वहां पर फरदीन खान जो कि फिरोज खान के बेटे हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। वो कहते हैं कि जी हाँ, मुझे पता है, मैं बहुत रोया था उस दिन क्योंकि जब ये सीन शूट हो गया कुर्बानी का तो उसके बाद वो गाड़ी घर आई और मैं उसकी हालत देखकर रोने लग गया। उसके जो है दरवाजे वो रस्सी से बंधे हुए थे, उसकी डिक्की की बुरी हालत थी, मतलब ऑलमोस्ट चकनाचूर हो गई थी। और ये जीना तमान ने कहा है कि एक पिक्चर को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए फिरोज खान ने अपनी गाड़ी को चकनाचूर तक कर दिया था। फरदीन खान कहते हैं कि ये सीन की कोई जरूरत नहीं थी मूवी में, कुर्बानी बन चुकी थी, कुर्बानी जो है वो रिलीज के लिए तैयार थी। अगर ये सीन नहीं भी होता मूवी में तो भी बात बन जाती, बट मेरे पापा ने ये सीन शूट

किया। इस पिक्चर को बनाते बनाते वो बहुत कर्जे में आ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस सीन को शूट किया। वो चाह रहे थे कि वो इस मूवी को बहुत ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से बनाए। कुर्बानी नहीं चलती तो वो सड़क पे आ जाते, ये उन्होंने खुद कहा है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर ज़ीनत अमान फिर से कहती है कि इतने ऑथेंटिक फिल्म मेकर थे फिरोज खान साहब कि आपको लगेगा वाह क्या बात है। मतलब उन्होंने उस मूवी को बनाने के लिए अपनी गाड़ी तक को चकनाचूर कर दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस ऑथेंटिसिटी को फॉलो करते करते वो किस हद तक पहुंच गए। जी हाँ, इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर ये एक और खूबसूरत सा गाना मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा पसंद भी है। और फिर करते हैं और भी बातें।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। जा रहे हैं हम, कल वापस आएंगे यानी कि फ्राइडे को वापस आएंगे, और हैप्पी फ्राइडे बोलकर आपके दिल में एकदम रौनक लगाएंगे। जी हाँ, सो आपको क्या करना है आज? वेल, आपको फ्राइडे का इंतजार करना है सबसे पहले तो, क्योंकि फ्राइडे का इंतजार भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। और दूसरी चीज आपको करनी है, अच्छा और हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है, मुस्कुराते रहना है, गाते रहना है, खाते रहना है, और जो भी आपको पसंद है वो करते रहना है। बेसिकली अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि जब तक आप खुद को खुश नहीं रखेंगे आप दूसरों को नहीं रख पाएंगे। सो खुद की खुशी इज इम्पॉर्टेंट, उसको सेक्रीफाइस कभी नहीं करना, रहना है खुश और दूसरों को भी रखना है खुश। दैट्स अबाउट इट। एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से।

है दो हर नजर से सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
1: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
0: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स का 6 साल काउंटडाउन। ब्रिस्बेन शहर ने 2032 ओलंपिक खेलों के लिए ठीक 6 साल का काउंटडाउन क्लॉक अनवेल किया है। इस मौके पर शहर के मेयर और आयोजकों ने ओलंपिक वेन्यूज की प्रगति की जानकारी भी दी। वहीं ब्रिस्बेन में एक साथ 4 जुड़वा बच्चों का जन्म। ब्रिस्बेन के एक अस्पताल में एक महिला ने आइडेंटिकल क्वाड्रप्लेट्स यानी कि 4 जुड़वा बच्चों को जो कि आइडेंटिकल दिखते हैं उनको जन्म दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसा केस 1.5 करोड़ में से किसी एक में ही देखने को मिलता है। वहीं साउथ ब्रिस्बेन में नया बस और ट्रांसपोर्ट रूट। शहर में ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने साउथ ब्रिस्बेन एरिया में नए इलेक्ट्रिक बस रूट्स और ग्रीन कॉरिडोर शुरू करने का फैसला किया है। वहीं क्वींसलैंड में समर आर्ट और म्यूजिक फेस्टिवल। ब्रिस्बेन आने वाले हफ्तों में कई बड़े इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स और आर्ट एग्जीबिशन की मेजबानी करने जा रहा है जिससे लोकल टूरिज्म को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके साथ ब्रिस्बेन रिवर फ्रंट का नया रूप। ब्रिस्बेन नदी के किनारे एक वॉकवे और पब्लिक पार्कर्स का काम पूरा कर लिया गया है जहां लोग सुबह शाम वॉक और फैमिली टाइम का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ स्कूलों में कम्युनिटी सेफ्टी ड्राइव। जी हां, ब्रिस्बेन के स्थानीय स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और एंटी बुलिंग को लेकर एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है ताकि छात्र एक सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर सके। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी। भारत में डेंगू के बचाव के लिए पहली वैक्सीन ODENGA को ड्रग कंट्रोलर से मंजूरी मिल गई है। ये वैक्सीन 4 से 60 साल तक के लोगों के लिए उपलब्ध होगी। वहीं संसद का मानसून सत्र और एजुकेशन पर चर्चा। संसद के मानसून सत्र में लगातार महंगाई बनी हुई है और परीक्षाओं को ट्रांसपेरेंट बनाने और पेपर लीक जैसे समस्याओं को रोकने के लिए सरकार नए कड़े नियमों पर कानूनों पर चर्चा कर रही है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ऐतिहासिक दौरा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी पूर्वी यूरोप यात्रा के तहत मोल्दोवा पहुंची है। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली मोल्दोवा यात्रा है। इस दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार और कूटनीतिक रिश्ते मजबूत होंगे। वहीं मॉनसून का असर और अलर्ट जारी। देश के कई राज्यों में मॉनसून की तेज बारिश जारी है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में नदी नालों का जल स्तर बढ़ने से प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वहीं इसरो का नया क्लाइमेट सैटेलाइट मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मौसम और पर्यावरण की सटीक जानकारी देने वाले नए सैटेलाइट लॉन्च की तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है जिससे खेती और मौसम के पूर्वानुमान में बड़ी मदद मिलेगी। वहीं स्कूलों में AI एजुकेशन की नई पहल। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल लिटरेसी के नए मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं। इसके साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले WHO की ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी नई रिपोर्ट में कैंसर प्रिवेंशन और तंबाकू कंट्रोल पर ध्यान देने की अपील की है। WHO के मुताबिक सही समय पर लाइफस्टाइल में सुधार से कई बीमारियों को रोका जा सकता है। वहीं यूनिसेफ का नया चाइल्ड हेल्थ कैंपेन। यूनिसेफ ने दुनिया भर के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों के बच्चों के रूटीन वैक्सीनेशन को और मजबूत करने के लिए एक ग्लोबल ड्राइव शुरू किया है। वहीं ग्लोबल मीडिया और वीजा पॉलिसी पर चर्चा। अमेरिका में विदेशी पत्रकारों के लिए वीजा नियमों में बदलाव के प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एसोसिएशन बातचीत कर रहे हैं ताकि जर्नलिस्ट बिना किसी रुकावट के रिपोर्ट कर सकें। वहीं कृषि और शिक्षा में AI का बढ़ता इस्तेमाल। एक ग्लोबल स्टडी के मुताबिक डेवलपिंग देशों में किसान और टीचर्स अब मौसम की जानकारी और बच्चों की पढ़ाई के लिए AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं। वहीं यूरोप में ग्रीन एनर्जी का बड़ा कदम। यूरोपीय देश आने वाले समय के लिए सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश तेज कर रहे हैं ताकि क्लीन एनर्जी के जरिए बिजली की खपत पूरी की जा सके। वहीं क्लाइमेट रिजिलियंस पर इंटरनेशनल समिट, दुनिया भर के पर्यावरण एक्सपर्ट्स एक मंच पर एकत्र होकर शहरों को अत्यधिक मौसम और क्लाइमेट चेंज के असर से बचाने के लिए सस्टेनेबल मॉडल्स पर मंथन कर रहे हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत, आज से ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शानदार शुरुआत हो रही है। भारत के ओपनिंग सेरेमनी में ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ध्वज वाहक की भूमिका में है। वहीं लॉन बॉल्स में भारत का अभियान शुरू, कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले ही दिन भारतीय एथलीट्स पुतुल सोनोवाल, पिंकी सिंह और रूपा रानी तिर्की ने लॉन बॉल्स के शुरुआती मुकाबलों में अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं एलए 2028 ओलंपिक्स की तैयारियां तेज, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स आयोजकों ने वॉलंटियर पोर्टल और टिकट प्री सेल की जानकारियां जारी कर दी हैं, जिससे फैंस में अभी से भारी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप के अगले वेन्यूज भी रेडी हो रहे हैं। इसके साथ टूर डी फ्रांस का रोमांचक दौर, जी हां, दुनिया की सबसे मशहूर साइकिल रेस टूर डी फ्रांस अपने अंतिम और सबसे चुनौतीपूर्ण पहाड़ी चरणों में पहुंच गई है, जहां राइडर्स के बीच कांटे की टक्कर जारी है। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारत, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वन सन ओवाने अंते जी आरजे संदेश औलक दराल से बने हुए। देखो हिंदी फिल्म या कोई भी फिल्म कह लो, पंजाबी कह लो, हिंदी कह लो या इंग्लिश कह लो, कोई भी फिल्म कह लो, हर फिल्म किसी ना किसी तत आधारित होंगी है। कोई नॉवल तो बनाई जाती है, किसी कोई किसी तो इंस्पायर होती है, कोई किसी की बायोपिक होंगी है। पर जो नॉवल्स तो फिल्म बनाई जाती है ना, उन्होंने इंटरेस्ट थोड़ा जा डिफरेंट तरह का होंगे, तो स्पैशली लोगों के लिए जेडे नॉवल लवर होंगे जिन्होंने नॉवल्स बहुत पसंद होंगे। तो अज भी बहुत सारे दर्शकों के बसिया हुई ने फिल्म नॉवल्स से आधारित है। हुण दी फिल्मों की गल नहीं करूंगी, मैं पुरानिया दी करूंगी, क्योंकि पुरानी फिल्मों की तो गल ही कुछ होर होंगी सी, जिदे विच प्यार हुंदा सी, समाज इतिहास इंसानी भावनावां बहुत गहराई दे नाल ते खूबसूरती दे नाल पेश कीतियां जांदियां सी। एक एक करके दस दी उन्हां बारे, पर पहलां तुसीं इह गीत सुणो।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
2: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
1: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसानी 101.1 एम ते जी आर जे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होए हो। हुणी जी फिल्म आई सी ना पति पत्नी, और वो थोड़े एक साल पहला कार्तिक आर्यन दी भूमि पेड़ निकलते अनन्या पांडे दी, ते एक पति पत्नी जिहड़ी दी ओजी पति पत्नी सी उस दी गल कर लैने आ। ए 1978 विच आई सी, बासु चैटर्जी दी कॉमेडी ड्रामा जो कमलेश्वर दे नॉवल पति पत्नी और वो ते आधारित हैगी। फिल्म विच संजीव कुमार सी, विद्या सिन्हा सी ते रंजीता लीड रोल दे विच सी। ए एक काल्पनिक जी मतलब दर्शाई गई प्रेम कहानी है जो कॉमेडी ते इमोशंस दे नाल भरी हुई है ते समाजिक रिश्तियां ते व्यंग भी कसदी हैगी। बहुत सोहनी है, देखना चाहोगे तो थानू यूट्यूब ते मिल जानी है।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
1: Sir, on stage, 5 minutes.
2: Okay. तुम्हारी मैं जा लगता रूम में रह।

ना बदला मैं ना बदला वो ना बदला तू, अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कमबख्त ये वक्त है बदला। पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: कह दूं तुम्हें
5: हाँ
4: या चुप रहूं
5: ना,
4: दिल में मेरे आज क्या है?
5: क्या है?

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

सर को मैं चाहता हूं। हमारे खाते में सारी दुनिया से लड़ सकता।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

सोकर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें परमानंद @optusnet.com।

जीवन बहुत खूबसूरत है। ये किसी धर्म, सीमा, जाति, उम्र या फिर देश में नहीं बटा है। जीवन तो जीवन है, जिसे जीने के लिए हम सब इस दुनिया में आए हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि बहुत शांति के साथ, प्यार के साथ, अपनेपन के साथ हम जीवन जिए। हमें से कोई भी ये तो नहीं चाहता ना कि हमारी जिंदगी में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, उत्पात हो या फिर आर्ग्यूमेंट्स हों। नहीं ना, हम सब खुशी खुशी रहना ही तो चाहते हैं। तो फिर हमारी जिंदगी में ये आर्ग्यूमेंट्स, ये लड़ाइयाँ, ये सब आता कहाँ से है? आइए आज मिलकर इसी पर विचार करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ आज एक बार फिर से हमारे सफर जीवन आधार में। जीवन आधार में जुड़ेंगे हमारी बातों के साथ, लेकिन इस एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

8701701 एम पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार। जीवन के आधार को आज एक बार फिर से हम साथ समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हम सबके जीवन में सारा खेल विचारों का है। आपके थॉट्स जो हैं वो या तो आपको बना देते हैं या आपको बिगाड़ देते हैं। भगवान बुद्ध ने भी स्वयं यही तो कहा है कि जीवन में सारा खेल विचारों का है। आप चाहें तो अपने विचारों से अपनी किस्मत तक को बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उन्हें बदल सकते हैं, आप अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। और यही विचार आप कोई अच्छे खासे करियर को खराब करके आपको मिटाने का भी काम करते हैं। तो खुद पर भरोसा रखिए और हमेशा अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग रखिए। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

रेडियो पिस्वानी पर जिंदगी के नाजो नखरों से दूर खुद को, खुद की सच्चाई को और इस सृष्टि को जानने का सफर है जीवन आधार। इसी सफर में आज एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ। आइए जीवन आधार में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं अभी अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो पिस्वानी।

अक्सर हम अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हम यही सोचते हैं ना। लेकिन आप दूसरों की दृष्टि में क्या हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, आपको क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं है, ये जीवन में महत्वपूर्ण है ही नहीं। जीवन में महत्वपूर्ण तो ये बात है कि आप अपनी दृष्टि में क्या हैं, आप खुद को कितना मानते हैं, आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप खुद को कितना अच्छे से जानते हैं और आप खुद की काबिलियत पर कितना भरोसा करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो खुद को पहचानिए, दूसरों से अपनी पहचान की उम्मीद रखना बंद कीजिए। और आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर जीवन आधार।

खुद को जानने का और उस परम शक्ति से मिलने का जो इस सृष्टि का पालनहार है। ये सफर है जिसका नाम है जीवन आधार। जीवन आधार पर आज हम एक बार फिर से जिंदगी को, जीवन को इस सुबह समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सफर के साथ आगे बढ़ते हुए एक और गीत यहाँ पर सुनेंगे। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

कहते हैं कि आप जो विचार रखते हैं ना दोस्तों, वही आपके शब्द बनते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं ना वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं वही तो हम बन जाते हैं। बात नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि अपने थॉट प्रोसेस पर हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं। अपने सोचे हुए को ही तो आप अंजाम देते हैं। अब देखिए ना, एक इंसान पूजा के पहले भी सोचता है और मर्डर करने के पहले भी सोचता है। कहने का मतलब है कि जो आप सोचते हैं वही तो आप बोलते हैं, और जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं फिर बोलते हैं, वही आपके एक्शंस होते हैं, वही काम आप करते हैं, यानी कि वही आपके कर्म बन जाते हैं, और जो कर्म आप करते हैं वो कर्म ही आपको बनाते हैं। इसलिए सबसे पहली शुरुआत अपनी सोच से कीजिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, जीवन अच्छा होता जाएगा। आइए एक और गाने के साथ बढ़ते हैं इसी जीवन के सफर में आगे, जीवन आधार में।

श्रोताओं, जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। ये सफर जो है ये अपनों के साथ के साथ साथ उनका साथ निभाने का भी है जो हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, जिन्हें हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन हम उनके भी हित को, उनके भी खुशियों को ध्यान में रखें और कर्म करें, यानी हम इंसान बने, इसी बात को ध्यान में रखने का सफर है जीवन आधार। आइए इसी सफर में आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

मन, कहते हैं मन बड़ा ही चंचल होता है दोस्तों, लेकिन ये मन बहुत जल्दी अपनी शांति भी छोड़ देता है। यानी किसी के बिहेवियर पर कई बार हमारा मन डिपेंड हो जाता है। लोगों का बिहेवियर अगर अच्छा रहा तो हमारा मन भी ठीक रहता है, अच्छा रहता है, खुश रहता है। लेकिन अगर लोगों का बिहेवियर हमारे लिए चेंज हुआ तो हमारा मन भी चेंज हो जाता है, विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के व्यवहार का असर आपके मन की शांति पर ना पड़े। वो जितना शांत है उतना ही रहे, विचलित ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

श्रोतों, ये था एक और जीवन आधार का सफर रेडियो प्रसवानी 107.1 AM पर। जीवन आधार की एक और कड़ी के साथ कल सुबह होगी आपसे फिर से रेडियो प्रसवानी पर मुलाकात। आज के सफर से आप सताक्षी इजाजत चाहेगी। नमस्कार।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन में प्रोग्राम जाने का सफर। एंड उम्मीद है जी आपकी सुबह प्यार पॉजिटिविटी और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरू हुई होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की फ्रेश अपडेट के साथ कुछ बातें, और उससे पहले आपको सुनाएंगे कुछ प्यारा सा गीत, ताकि उस गीत को सुनकर आप सभी एनर्जी से भर जाएं और आप सभी तरोताजा होकर न्यू अपडेट्स जरूर सुने जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। टिल देन सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बानी में। तो दोस्तों, आज ब्रिस्बेन में सुबह का जो मौसम है ठंडा और सुहाना रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर आज दोस्तों लगभग 21 डिग्री सेल्सियस और कम की बात करें तो मिनिमम 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है। दिन भर हल्की धूप और हल्का ठंडा मौसम बना रहेगा। तो आइए फिर इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। तो दोस्तों लगता है ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। जी हाँ, आज से ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक गेम्स में सिर्फ और सिर्फ 6 साल बाकी रह गए हैं और इस मौके पर दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर और ओलंपिक जो वेन्यूज है उसकी तैयारियों को लेकर काम जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पर अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों ओरिजिन एनर्जी ने कंफर्म किया है कि साइबर अटैक के बाद कुछ कस्टमर्स का डाटा जो है वो एक्सेस हुआ था और कंपनी अफेक्टेड कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर रही है और सिक्योरिटी मेजर्स और मजबूत किए जा रहे हैं। तो आप सभी भी अलर्ट जरूर रहिएगा। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इस ट्रैक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन। तो दोस्तों, ब्रिस्बेन के क्यू पैक में इस साल जो है नवंबर से शुरू होने वाला है द लायन किंग म्यूजिकल टिकट सेल्स के मामले में पहले ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ चुका है। अब पब्लिक में इस शो को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। दोस्तों, आज शाम जो है ब्रिस्बेन के प्रिंसेस थिएटर में ब्लैक डे आउट म्यूजिक इवेंट होगा, जहां पर फर्स्ट नेशंस आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीतने वाले हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी, वैसे दोस्तों क्या आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर भेड़ों यानी कि शीप की संख्या जो है लोगों से भी ज्यादा है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में। इसी के साथ दोस्तों आइए एक विचार की बात करते हैं। खुद पर भरोसा रखना ही हर सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब तक आप खुद पर यकीन रखते हैं तब तक कोई भी मंजिल दूर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है एक खूबसूरत से गाने का और गाने के बाद लौटेंगे और लेकर आएंगे और भी फ्रेश ऑस्ट्रेलिया अपडेट्स, एंटरटेनमेंट और मॉर्निंग मस्ती सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्बेन पर।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। तो आइए फिर इसी के साथ इंडिया न्यूज में कुछ नजर डालते हैं। इसरो जो है वो अपने अगले स्पेस मिशन की तैयारियों में लगा हुआ है। वहीं पर मॉनसून के चलते कई राज्यों में बारिश जारी है। लोगों को ट्रैवल के दौरान जो है सावधानियां रखने की सलाह भी दी गई है। वहीं पर अगर हम एंटरटेनमेंट दुनिया की बात करें तो दोस्तों बॉलीवुड में कई बड़े स्टार्स की अपकमिंग मूवीज की रिलीज डेट्स जो है वो अनाउंस हो चुकी है। वहीं पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नए थ्रिलर और कॉमेडी शोज जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करिए तो उसमें नए सिंगल्स को भी फैंस का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दोस्तों वीकेंड प्लेलिस्ट में रेट्रो बॉलीवुड सॉन्ग्स दोबारा ट्रेंड कर रहे हैं और आप सभी उन सॉन्ग्स को जरूर सुने। तो आइए फिर इसके साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

इसी के साथ दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड की अपडेट जाने तो दोस्तों, एआई टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर और एजुकेशन में और ज्यादा यूज हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम क्लाइमेट एक्सपर्ट्स की बात करें तो दोस्तों, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स है वो ट्री प्लांटेशन और रिसाइकलिंग पर काफी जोर दे रहे हैं। वेरी वेरी वेरी गुड न्यूज। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम स्पोर्ट्स में नजर डालें तो क्रिकेट और फुटबॉल के इंटरनेशनल मैचेस को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट बनी हुई है। ऑस्ट्रेलियन एथलीट्स कई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वहीं पे दोस्तों, हॉलीवुड के कई जो स्टूडियोज हैं उन्होंने 2027 के लिए अपने बिग बजट फिल्म्स की शूटिंग भी शुरू कर दी है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिसवानी में। तो दोस्तों आप सभी ने सुना है ये प्यारे प्यारे गीत और आप सभी ने आज जाना है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट्स, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, इंडिया, वर्ल्ड, सभी चीजों की अपडेट्स आप सभी को सुनाया है आपके दोस्त आरजे चाने जैने। और इसी के साथ दोस्तों वक्त हो चुका है आप सभी को टाटा बाय बाय कहने का, लेकिन उससे पहले दोस्तों याद रखना जिंदगी में ना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट होता है, याद रखिए, क्योंकि खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट कभी भी वेस्ट नहीं जाता अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया हो। तो दोस्तों इसी के साथ आज का मॉर्निंग शो यहीं पर समाप्त होता है। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे चाने जैन, मुस्कुराते रहिए, अपनों का

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। श्रीलंका में डेंगू से 56 लोगों की मौत, जुलाई में 20,000 नए मामले। श्रीलंका पिछले करीब 10 सालों में डेंगू के सबसे बुरे प्रकोप का सामना कर रहा है। ये बीमारी इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है कि सरकार को इससे निपटने के लिए ड्रोन तैनात करने पड़े हैं। मिलिट्री ड्रोन की मदद से छतों और मच्छरों के पनपने वाली जगहों का पता लगाया जा रहा है और जगह जगह जमा पानी का पता लगाकर डेंगू फैलने से रोका जा रहा है। हिटलर के जन्म स्थान में खुला पुलिस स्टेशन। ऑस्ट्रिया ने जर्मन तानाशाह की भयानक विरासत को दी नई पहचान। ऑस्ट्रिया के ब्रैनो एम इन शहर में उस घर में एक पुलिस स्टेशन खोला गया है जहां जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। ये 17वीं सदी के पुराने सराय के बारे में सालों से चल रहे विवाद के बाद हुआ है। इसी घर में अप्रैल 1889 में नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। सिक्किम टनल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 25, सभी शव बाहर निकाले गए। NHPC तीस्ता स्टेज 6 जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों की तलाश के लिए राहत एवं बचाव अभियान देर रात तक जारी रहा। बचाव दलों ने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच अभियान को जारी रखा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के समर्थन में पोस्ट हटाएं। IIT मद्रास ने छात्रों से इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर किया आगाह। नीट पेपर लीक मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जहां इन छात्रों का नारा लगाकर बैनर पर अपनी बात लिखकर या फिर छोटे वीडियो बनाकर समर्थन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने छात्रों से कहा है कि वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियोस को हटा दें। IIT मद्रास के एक छात्र ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा, यूनिवर्सिटी ने हमसे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में डाले गए इंस्टाग्राम वीडियो को हटाने के लिए कहा है। तबियत बिगड़ने पर जंतर मंतर से हटे अभिजीत दीप के। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महीने से अधिक समय से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीप के की तबियत अचानक बिगड़ गई है। तेज बुखार और शरीर में दर्द के कारण उन्हें मजबूरी में प्रदर्शन स्थल से हटना पड़ा। इसकी जानकारी दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। आइए जुड़ते हैं अब खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। कॉमनवेल्थ गेम्स में 125 भारतीय खिलाड़ी 6 खेलों में उतरेंगे। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में 23वीं कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। 2 अगस्त तक चलने वाले इस इवेंट में 74 देशों के 3,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 10 खेलों में 215 गोल्ड सहित कुल 1,168 मेडल दाव पर होंगे। भारत के 125 खिलाड़ी 8 खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

जी कहते हैं ना कि फूलों की शुरुआत कली से होती है, फूलों की शुरुआत कली से होती है, जिंदगी की शुरुआत प्यार से होती है, प्यार की शुरुआत अपनों से होती है और अपनों की शुरुआत आप से होती है। सो आपका तहे दिल से स्वागत है सुबह का सफर में। आज मैं शशि जोखन आपका साथ दे रही हूँ, ठीक है। और नीलम आज नहीं है। देखिए ऐसा होता है कभी कभी कि हमको भी छुट्टियों पर जाना होता है ना। सो दिस इज हाउ

0: जी, कैसा लगा आपको ये नगमा? देखिए, एक बार फिर आपसे कहती हूँ कि फूलों की शुरुआत कली से होती है, फूलों की शुरुआत कली से होती है, जिंदगी की शुरुआत प्यार से होती है, और प्यार की शुरुआत अपनों से होती है, और अपनों की शुरुआत आपसे होती है। सो एक बार फिर करती हूँ आपका स्वागत और लेकर चलती हूँ दूसरे नगमे की ओर। और जैसे हमने पहले कहा कि आज एक्चुअली अमिता साथ में नहीं है, मगर कोई बात नहीं, मैं हूँ शशि जोखन आपका साथ देने के लिए। वैसे तो जतीश जी और अमिता जी आते हैं ना हर हफ्ते, मंडे टू थर्सडे। अमिता और जतीश जी बहुत ही चुलबुली अंदाज में आपका साथ देते हैं। और फिर दूसरी ओर आती है सताक्षी हमारे बाद में, और वो भी बहुत ही नटखट है। पर आज तो मैं हूँ आपका साथ देने के लिए, ठीक है?
1: Listen close what I gotta say. Cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go. Yeah.

जी कहती हूँ आपको नमस्कार, कैंचो, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। भाई आप तो शायद रास्ते पर होंगे, नौकरी के लिए निकल गए होंगे, बच्चों की स्कूल भी चल रही है और मौसम सुहाना मौसम है ना, तो सुनते हैं ये नगमा, शामिल करती हूँ आप सभी को।

जी, बहुत ही प्यारा सा ये नगमा है ना। हाँ जी, सो चलते हैं, एक और गीत हम सुन लेते हैं और फिर आपको लेकर आगे बढ़ेंगे। मगर ये गीत जो हमने ली है इस बार, ये फिल्म धूम 3 से हमने ली है। धूम 3 आपको शायद याद होगा, आमिर खान के साथ कैटरीना कैफ इस फिल्म में दिखी थी। और भाई आमिर खान के बारे में क्या कहूँ, तीसरी बार शादी कर चुके हैं।

जी, होले होले, बस इसी तरह चलते ही रहिए और हम कार्यक्रम लेकर आपके लिए बस ऐसे ही आते ही रहेंगे पूरे 9 बजे तक। और आप सोच ही रहे होंगे कि आज आवाज कुछ अलग सी लग रही है, ये नीलम की आवाज तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, ये शशि जौकन की आवाज है और मैं आती हूँ आपके लिए हर रविवार को, याद रखिए हर रविवार को 5 से 7 बजे तक, और आपका साथ इसी तरह देती हूँ हर रविवार को। मगर नीलम अभी आज नहीं आ पा रही है आपके साथ, मगर कोई बात नहीं, हम है यहाँ आपका साथ देने के लिए। और बहुत ही आरामदायक आज मौसम जो है बहुत ही खूबसूरत है ना, 11 से लेकर 22 तक आज के दिन की जो हाईएस्ट रहेगी वो 22 रहेगी। एंड धूप निकली हुई है एंड बस होले होले आप काम की तरफ बढ़ रहे हैं, बच्चे भी खुश है क्योंकि धूप निकली हुई है। और इसके साथ साथ देखिए वीकेंड भी बहुत ही अच्छी तरह से आप बिता पाएंगे क्योंकि धूप निकलेगी, सूर्य जी मेहरबान रहेगी आप पर, है ना। सो चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अग्निपथ का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए।

0: हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सा गीत। और हाँ जी, मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी है, क्योंकि क्वींसलैंड की जो काउंसिल है इस इवेंट की ओलंपिक सेरेमनी में 6 साल एक्चुअली बाकी रहने का जश्न मना रही है। इजन दैट अमेजिंग? सो बहुत ही बिजी रहेंगी क्वींसलैंड यानी कि ब्रिस्बेन, और ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने बचे हुए समय को दिखाने के लिए एक काउंटडाउन क्लॉक भी लगाई है, और कहा गया है कि ये बहुत ही एक्साइटेड है वहाँ के लोग, बहुत ही, आप लोग सभी लोग, हम लोग सभी बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे और ये ब्रिस्बेन जो ये जो ब्रिस्बेन की जो ये छवि है ना, ये दुनिया भर में फैलेगी क्वींसलैंड की एक्चुअली। सो आई एम श्योर आप लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे, क्यों नहीं, होनी ही चाहिए ना, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक गीत और सुनते हैं।
1: चुप गई तो क्या, अब देखा जाए।
0: फिल्म धुरंधर से हमने इसे लिए है।

हाँ जी, अगर अभी अभी आप हमारे साथ ट्यून इन किए हो तो आपका तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। और जैसे मैं अभी बता रही थी कि क्वींसलैंड में ओलंपिक होने जा रही है, तो एक्चुअली ओलंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी है ये इसकी डेट आ चुकी है और ये है 23 जुलाई 2032। इस ब्रिस्बन में होगी इसकी ओपनिंग और जिसके बाद 24 अगस्त को पैरालंपिक खेलों की शुरुआत होगी। और हाँ जी, बहुत ही बढ़िया है। कैसे, आप में से कितने लोग गए थे राहत फतेह अली खान की शो देखने के लिए? माय गॉड, ब्रिस्बन, यू हैव डन सुपर्बली। पूरा टोटल फुल हाउस, हाउस फुल जिसे आप कहते हैं, एंड बहुत ही जबरदस्त शो राहत जी ने दिए और अपने साथ वो अपने बेटे को भी लाए थे इस बार। सो इजन दैट अमेजिंग कि हम विश करते हैं, होप करते हैं कि उनकी जो अगली पीढ़ी है वो उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ती ही रहे। सो चलो उन्हीं के आवाज में ली गई ये नगमा आपके लिए पेश करते हैं, फिल्म बादशाह से ये नगमा।

हाँ जी, तो बातें कर रहे थे राहत फतेह अली खान जी के बारे में। तो बहुत ही बढ़िया सा उनका शो गया। एंड देखिए, रेडियो ब्रिजवानी में अगर आप अपने किसी भी बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो हम दिलो जान से आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो याद रखिए कि अगर किसी को जानते हो जो अपने शोज ला रहे हैं या फिर अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो एंजेला पूरन को आप बेशक कांटेक्ट कीजिए। रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर आप उनके नंबर पर फ़ोन कीजिए और वो आपसे बातें करेंगी एंड आपको गाइड करेगी, ठीक है? एंड चलो एक और गीत सुनते हैं, फिल्म सिम्बा से ली गई है। ये भी राहत फतेह अली खान और आशीष कौर और तनिष्क की आवाज़ों में।

सुन रहे हैं सुबह का सफर रेडियो ब्रिज वाहनी 1701 पर। और हाँ जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको क्या पता है, चैनल 10 ने रविवार को मास्टर शेफ में मेगन मार्कल के आने की एक झलक दिखाई, और इस क्लिप में डचेस ऑफ सक्सेस ये कहती हुई दिख रही है कि मुझे उस तरह से खाना बनाना नहीं पसंद है। तो अब अप्रैल में ये पता चला था कि डचेस शो की जो 18th सीजन है उसमें सेलिब्रिटी गेस्ट जज के तौर पर शामिल होगी। तो उनके आने की बात तब तक गुप्त रखा गया जब तक कि वो अपने पति प्रिंस हैरी के साथ ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान मेलबर्न स्टूडियो नहीं पहुंच गई थी। सो देखो, ये भी एक बात है। सो ये सब ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, और इसके साथ साथ आपको तो पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। तो खास तौर से मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का वो शहर है जहां सबसे ज्यादा भारतीय आबादी है। सो एनीवे, इसके बारे में हम जानकारी आपको बाद में देंगे, पहले तो आप ये गीत सुनिए। ये भी राहत फतेह अली खान की सॉन्ग है, फिल्म सुल्तान से ली गई।

0: हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सा ये गीत, और उम्मीद है आप इस फिल्म को देखे होंगे, सुल्तान का ये गीत। और देखिए, सलमान खान की फिल्मों की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उनकी फिल्म में कभी गंदे सीन्स नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे सीन्स ना होने के बजाय लोग फिर भी उनकी फिल्में देखना चाहते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि फिल्मों में गंदे ही सीन्स रहे या तो ही लोग देखने जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो और हाँ, राहत फतेह अली खान की आवाज़ में ये गीत थी, तो हमने सोचा कि जो लोग, देखिए सभी को तो शायद टिकट नहीं मिले होंगे, मगर जो लोग अगर मिस कर दिए राहत फतेह अली खान की जो शो देखने का, तो मैं एक झलक देती हूँ आपको कि उस रात को क्या हुआ, उन्होंने क्या स्पीच में कहा।
1: अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, लव यू। मोहतर साहब निगरान, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिस्बेन, हाउ आर यू?

0: और वी आर मेरा पूरा बैंड और सिंस जनरेशन वी आर प्राउड टू बी पंजाबी. पंजाब इज अ ग्रेट पंजाब. So, Brisbane, now let's start this evening. ये जो segment है इसको मैं बोलता हूं love segment.
1: खैर इसे मैं यहीं पर छोड़ रही हूं. तो ये थे कल रात्रि जब राहत जी आए स्टेज पर तो उन्होंने किस तरह से लोगों से बातें की, उनको अपना प्यार जताया लोगों के साथ. सो चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस बार किशोर दा की ओर.

हाँ जी, बहुत ही प्यारा सा ये नगमा। और हाँ जी, मैं आपसे बता रही थी कि ऑफ कोर्स आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का वो शहर है जहाँ सबसे ज्यादा भारतीय आबादी रहती है, मानते हो आप ना। तो यहाँ भारतीय मूल के लगभग 242,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। और सिडनी दूसरे नंबर पर है, यहाँ भारतीय समुदाय में के लगभग मेरे ख्याल से 230,000 लोग रहते हैं। और देखिए, मेलबर्न की ओर देखते हैं तो मेलबर्न में ग्लेन, वेवली, बॉक्स हिल और क्लिटन जैसे इलाके भारतीय समुदाय और उनकी सांस्कृतिक केंद्रों के लिए बेहद मशहूर है। और सिडनी में मेरे ख्याल से पैरामाटा, हैरिस पार्क और ब्लैकटाउन जैसे इलाके मुख्य सांस्कृतिक केंद्र है। और वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के अन्य प्रमुख शहरों में भी जैसे पर्थ, ब्रिस्बन, एडिलेड भी शामिल है जहां भारतीय समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। और आप मेलबर्न इंडियन कम्युनिटी गाइड के जरिए ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर लगे कि आपको और जानकारी चाहिए तो बेशक आप यहाँ पर जाइए। देखिए, कहते हैं कि जिंदगी की आधी उम्र तक पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया और बाकी आधी उम्र उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। और अंत में क्या हुआ? हाँ जी, आप बताइए, अंत में क्या हुआ? अंत में ना शरीर बचा और ना ही पैसा। सो एनीवे, चलो ये गीत हम सुनते हैं। आप जहां से भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हो, जहां से भी हमें सुन रहे हो, आपका स्वागत कर रही हूँ। उम्मीद है कि अभी तक दिन अच्छा ही कट रहा है आपका। अभी तो सुबह सुबह है, अखा दिन बाकी है ना। सो बी हैप्पी, खुशियां ही खुशियां हो दामन में आपके।

सुन रहे हैं सुबह का सफर और नीलम आज आपके साथ नहीं है, बट मैं शशि जोखन आपका साथ दे रही हूँ। और हाँ जी, हर रविवार को आप मेरे साथ जुड़ सकते हो 5 to 7 PM, मैं आपका साथ देती हूँ। तो बस एक घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। या कहते हैं ना कि जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, हो रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसका इंतजार है आपको, वो पल भी आएगा जिसका इंतजार है आपको, बस ईश्वर पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, और अगर कभी ना भी हो किसी कारण बस, तो उसे पॉजिटिव रहिए, उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश जरूर कीजिए। ये जीवन हमें बहुत मुश्किल से मिलती है, इंसानी जीवन। हाँ,

हाँ जी, बहुत ही प्यारा सा गीत पसंद आया आपको। जिंदगी कितनी खूबसूरत है। एंड जैसे हमने कहा, हाँ, मुझे पता है, हर बार तो हम खुश नहीं रह सकते ना, और हर बार हमारी जिंदगी, हर बार ऐसे भी नहीं रह सकते कि परफेक्ट इसे हम कह सकते हैं। कुछ ना कुछ जीवन में होते ही रहते हैं, और जब कुछ भी नहीं तो गम की बौछार आ जाती है हमारी, और हमारे फैमिलीज में कुछ ना कुछ होते रहते हैं, तो ये सब हमें अफेक्ट करते हैं। मगर फिर भी खुश रहने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो शरीर है, इसमें बहुत सारे बीमारियां आ सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खुश रहिए, और जो आपको ना ठीक लगे, अगर कोई आपको बुरी तरह से कुछ कह दे, तो उसे इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, शांत रहने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर आप भी भड़केंगे और सामने वाला भी भड़केगा, तो आपको तो पता है होगा क्या ना। सो एनीवे, दैट वाज वन थिंग। और देखिए, अभी नेशन पार्टी की जो नेता है ना, पॉलिन हैंसन, ये बहुत कुछ कह रही है। आपको तो पता ही है, मुझे फिर से दोबारा इसे बताने की जरूरत नहीं है, मगर ऑस्ट्रेलिया की तो बात ही कर रही है वो। मगर अब पॉलिन हैंसन कह रही है कि न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया आने वाले लोगों पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी वो दे रही है। देखिए, तो इसके तहत ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले प्रवासियों का कम से कम 8 से 10 साल तक न्यूजीलैंड का नागरिक होना जरूरी होगा, ऐसा प्रस्ताव वो रखना चाहती है। और उनकी मुख्य नीति का मकसद ये रोकना है कि विदेशी प्रवासी जो न्यूजीलैंड का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया में आसानी से घुसने के लिए एक पिछले दरवाजे या सुविधाजनक, जिसे आप कहते हैं ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए एक बैकडोर जैसा सिस्टम यूज करते हैं, तो नागरिकता की इस लंबी अवधि की शर्त को लागू करके वो ये पक्का करना चाहती है कि लोग सागर पार करने के लिए नागरिकता का इस्तेमाल एक सीढ़ी की तरह करने से पहले सच में न्यूजीलैंड के प्रति पूरी तरह से पूरी तरह से न्यूजीलैंड को अपना अपना जो समय है, अपना जो काम जो वो करते हैं, जो पैसे खर्च करते हैं, ये सब न्यूजीलैंड में करिए, फिर बाद में कुछ कई सालों बाद वहां रहने के बाद तब आए आप, तो ऐसा लगे कि हाँ, आप किसी कारणवश मूव हो रहे, मगर थोड़े ही दिन में सिटीजन मिलने के बाद आप दूसरी ओर चले जाए, तो ग्रीनर पास्चर्स की ओर। तो इसीलिए वो कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ऐसे बहुत कुछ सुनने को मिलते हैं ना। चलो ये गीत सुनते हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत, किशोर दा की आवाज में, धर्मेंद्र और राखी पर फिल्माई गई फिल्म ब्लैकमेल से ली गई, ये बहुत ही प्यारा सा नगमा।

हाँ जी, डिफरेंट मूड डिफरेंट सेंटिमेंट, बहुत ही आइकॉनिक नगमा ये किशोरदा की, ये बहुत ही प्यारा सा गीत। और हाँ जी, वेलिंगटन एक्चुअली ब्रिस्बेन में बहुत कुछ हो रही है अभी, और एक अभी ग्रैंड भजन इवेंट भी होने वाले हैं। एंड इसमें, इस भजन में अविनेश राम सिडनी और हितेश सामी फ्रॉम क्वींसलैंड, इनके मध्य में ये कंपटीशन होने को है। सो ताल इवेंट्स प्रेजेंट्स एलिवेट फोकलिव ग्रैंड भजन इवेंट, और ये होने जा रही है, एक्चुअली ये होने जा रही है 28 अगस्त, ये शुक्रवार का दिन है, और 6:30 बजे शाम को ये शुरू होगी, और ये लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल में आप जाकर इसे देख सकते हैं। ज़रूर जाइए और इनकी हौसला को बढ़ाइए एंड इन्हें सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारे कम्युनिटी में ऐसे ऐसे जो अच्छे अच्छे लोग जो भजन गाते हैं, वो अपनी इस इंटरेस्ट को बरकरार रखे, ठीक है? और हम जैसे लोगों को एंटरटेन भी करें, और अन्य जो यंग टैलेंट है वो भी उभर कर आए ना। और हाँ, प्राउडली अनाउंसिंग जो रेडियो पार्टनर है कौन है, आपको तो पता ही है ना, ब्रिजवानी रेडियो 1701 AM, ये वी आर डिलाइटेड टू बी द रेडियो पार्टनर ऑफ दिस इवेंट, द ग्रैंड भजन इवेंट। और जैसे हमने कहा, जरूर जाइए। एंड हाँ जी, देखिए जतीश जी और एनजी जी बहुत सालों से सपोर्ट करते आ रहे हैं इन लोगों को, सो आप भी आइए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, ठीक है? तो जाइए, जरूर देखिए, मिस मत कीजिए। हाँ, और ऐसे जगह पर हम जाते हैं ना, तो कई लोगों से मुलाकात भी होती है, जिन लोगों को हम कई समय से नहीं देखे हैं वो लोग भी हमें मिल जाते हैं। सो इट्स इट्स लाइक एंटरटेनमेंट के साथ साथ ऐसे भी हो जाता है कि हमें कनेक्शन होती है ना अन्य लोगों के साथ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इवेंट हो, जाने की कोशिश जरूर कीजिए। मुझे पता है सभी लोग बिजी होते हैं, मगर इट्स इम्पोर्टेंट एज वेल। अपने बच्चों को भी लेकर जाइए।

0: सुबह से शाम तक
1: When I will dance, my dance shall speak for me.
0: शाम से रात्रि तक
1: Superb, superb, fabulous, outstanding.
2: नहीं ऐसे नहीं, खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
3: हिल मत चल
2: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा या
3: या
2: ओके सॉफ्ट
3: सॉफ्ट
2: या
3: अब लाउड या

0: हाँ जी, मुझे पता है पता है, आप नीलम को मिस कर रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तो उम्मीद है कि आप सुन रहे हो और इतना भी नहीं मिस कर रहे हो उन्हें, पर जहां भी है अगर सुन रही है कार्यक्रम तो नीलम, हाय टू यू। और हाँ जी, देखिए मंडे टू थर्सडे अमिता जी और जतीश जी आ जाते हैं ना आपके साथ। हाँ जी, बहुत ही चुलबुली सी प्रोग्राम उनकी होती है, और फिर उधर नीलम आ जाती है, फिर उनके बाद सताक्षी आती है, नटखट साक्षी। तो ऐसे सभी अपने अपने प्रोग्राम्स लेकर आते हैं आपके लिए। एंड जैसे हमने कहा कि मैं हर रविवार को आती हूँ 5 to 7, और वो एक रंगीन शाम आपके नाम, और कहाँ पर? रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर। ठीक है, तो जरूर आप साथ दीजिए उस समय
1: मैं
0: भी।
1: चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
0: चलो उड़ी उड़ी जाए एक साथ।
3: किसकी का तूने पता धत तेरी।

0: जी साथ ही उड़ी उड़ी जाए, ठीक है। एंड देखिए टाइम बहुत कम है हमारे पास। हाँ जी चलते हैं अपने स्पॉन्सर्स की ओर।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉल और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: हाँ जी देखिए जीवन में हम जो भी काम, हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें दी जाती है, चाहे घर पे हो या काम पर हो, कहीं पर भी हो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें मिलती है ना, दिलो जान से उसे करनी चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि आप जो कर रहे हो अच्छी तरह कर रहे हो, सही ढंग से कर रहे हो, और जिसके लिए आप कर रहे हो, जो आपको तनख्वाह देते हैं या फिर जो भी देते हैं, उनको भी ऐसा लगे कि भाई हमने किसी को जिम्मेदारी दी है और वो बहुत सही ढंग से अपने काम को करते हैं ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है ना, तो हम कुछ भी अपने जीवन में अच्छी तरह से तरक्की नहीं कर पाएंगे। सो आप इसे जरूर नोट कीजिए, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, और इसी को लेकर क्वींसलैंड की वुलवर्थ स्टोर में अपनी जिम्मेदारी से सही कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर काम करने के लिए लाखों ऑस्ट्रेलियन लोगों ने एक कर्मचारी की तारीफ की है। आपको पता है ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो नाइजल जो एक बड़ी सुपरमार्केट यानी वुलवर्थ सुपरमार्केट में वुलवर्थ कंपनी के साथ 2 दशक से वो काम कर रहे हैं, और उन कई कर्मचारियों में से एक है जिनकी जिम्मेदारी है शेल्फ पर सामान भरा हुआ रखना चाहिए और सही ढंग से यूनिफॉर्म वे रखनी चाहिए ना। लेकिन जिस बेहतरीन ढंग से नाइजल अपना काम करते हैं, उसी उसे एक सॉन्ग राइटर की उन पर नजर पड़ी और कैसे शेल्फ इतनी नीट एंड टाइडी खूबसूरती के ढंग से उन्होंने सेटअप किया है, तो उन्होंने बताया कि साफ है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने काम पर गर्व है, ठीक है, और जिसे चीजों का यूनिफॉर्म वे होना बहुत ही पसंद है। तो उन्होंने कहा कि ये और भी स्टोर ऐसे होना चाहिए, और उनका मानना है कि जब कोई कर्मचारी इस तरह से अपनी जिम्मेदारी में बढ़कर काम करता है तो उसे सराहा जाना चाहिए और उसकी अतिरिक्त मेहनत के लिए उसे उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया ना, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया, और आपको पता है कई लाखों लोग, लाखों की संख्या में लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। सो देखिए आप भी, और बच्चों को भी सिखाइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को भी सिखानी चाहिए। छोटे जब होते हैं ना बच्चे, तभी से उनको सिखानी चाहिए कि भाई जो भी आप करें सही ढंग से करें और इंटरेस्ट लेकर करें, ठीक है। तो ऐसे इनके जीवन में ये जो पैटर्न सेटअप हो जाएगा ना, तो फिर आगे चलकर आपको तकलीफ नहीं होगी एज पेरेंट्स। तो चलते हैं, होले होले चल रहे हो आप ना।

0: राज।
1: हाँ जी, चलो चलते हैं अपने स्मार्ट।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ग्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ग्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: हाँ जी, देखिए हमारी जो जिंदगी है ना, एक पहेली ही तो है, तो इस पहेली को किस तरह से रेखा और संजय दत्त पर फिल्माई गई, इसे आप सुनिए।

0: बेशक बेशक, बहुत ही बढ़िया गीत ये, उम्मीद है आपके दिन को भी बढ़िया बना दे। कहते हैं ना कि जो भी हम सुनते हैं, तो अगर शुरुआत में ही दिन की सुबह सुबह अच्छे अच्छे नगमे आपको सुनने को मिले तो आप तरोताजा फील करेंगे। सो उम्मीद है कि आप एंजॉय किए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के ये खास लम्हे मुबारक, आज के ये खास लम्हे मुबारक, आंखों में बसे नया ख्वाब मुबारक। जिंदगी जो लेकर आई है आपके लिए आज, जिंदगी जो लेकर आई है आपके लिए आज, वो तमाम खुशियों की हंसी की सौगात मुबारक।
1: Sending a digital top-up to loved ones in Fiji is super easy. Keval apne nearest dairy, supermarket or petrol station pahunchiye aur kharidiye 10, 20, 30 ya $50 top-up. Aap website www.digicelinternational.com visit bhi kar sakte hain. Digicel top-up apne family ko Fiji dene ke liye. Paisa bhejne ke liye our partner Click Express Pick is the easiest way to send money to Digicel Fiji. Keval aap को रजिस्टर होना है एट www.clickexpresspic.com पर। डिजिसेल, वी आर बेटर टुगेदर।
0: हाँ जी, जैसे हमने पहले कहा कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो एंजेला पूरन को आप फोन कीजिए रेडियो ब्रिजानी 1701 पर। एंड ऑफ कोर्स हम आपको आपकी जो जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी मदद करेंगे। और देखिए 9 बजे तक मैं आपका साथ दूंगी, आप भी इसी तरह देते ही रहिए। चंद मिनट ही बचे हुए हैं हमारे पास पुराने गीतों की दुनिया में, आपको लेकर चलते हैं मोहम्मद रफी जी की आवाज। फिल्म गुमनाम से ली गई ये नगमा।

जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

0: प्रिया,
1: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: हाँ जी, आप सुन रहे हैं सुबह का सफर, और हमारे पास अब बस चंद लम्हे ही बचे हुए हैं, तो एक और गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, इसे सुनिए। कुछ याद आया, फिल्म आशा से ली गई है।

0: खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूंगा, मगर ये कहूंगा।
1: क्या?
0: यही है, यही है, यही तो है वो।

हाँ जी, उम्मीद है आप कार्यक्रम पसंद कर रहे होंगे। अब तो मेरा समय ही हो गया है जाने का, मगर मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि जो पाक शब्द है ना, वो इंसान के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और पाक शब्द बहुत ही प्रिय है, हम जिंदगी भर पाक के पीछे ही भागते रहते हैं। कहते हैं जो मिलता है वो भी पास है और जो नहीं मिलता वो भी पास है। तो मैं जल्द जल्द आपको बताती हूँ, पासे होती है पति, पासे पत्नी, पासे पुत्र, फिर पासे पुत्री, पासे परिवार, पासे प्रेम, पासे पैसा, पासे पद, पासे प्रतिष्ठा, पासे प्रशंसा, पासे प्यार और पासे पार्टी, पार्टी और फिर पासे परीक्षा और पासे पब्लिसिटी। इन सब पाके पीछे पढ़ते पढ़ते

हम पासे पाप भी कर बैठते हैं, फिर हमारा पासे पतन भी होता है और अंत अंत में बचता है सिर्फ पासे पछतावा। तो पाप के पा के पीछे पड़ने से अच्छा है कि हम पासे परमात्मा के पीछे पड़े और पासे पुण्य कमाए। तो आपको प्रणाम, और ये गीत हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, बस चंद सेकंड्स ही बचे हैं हमारे पास। रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, बस साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। मैं शशि जोखन यहाँ से रुखसत ले रही हूँ और आ जाएगी सताक्षी बस कुछ ही लम्हों में।

नमस्कार, आदाब, वेलकम। एक बार फिर से एक नई सुबह हो चुकी है और इस नई सुबह के नए से आगाज के साथ आपके साथ जुड़ चुकी है आपकी सताक्षी। जहाँ नया सा दिन है, नई खूबसूरती है, नए गोल्स हैं, नए सपने हैं और इन सपनों को बेटर तो हमें बनाना है। वैसे इस सुबह कैसे हैं आप सब? देखिए, अगर अभी तक आप ब्लैंकेट के अंदर हैं और क्लॉक देख रहे हैं एक आंख खोल के कि बाहर निकले कि ना निकले, तो भाई उसे बंद कीजिए, अलार्म को बंद कीजिए, साइड में रखिए और उठ जाइए, ठंडी हवा का झोंका फील कीजिए, विंडो पर जाइए, अपनी विंडो को ओपन कीजिए और एहसास में डूबिए कि यार ये सुबह कितनी खूबसूरत है और इस सुबह के साथ आपका दिन कितना बेहतरीन होने वाला है। फिलहाल बहुत कुछ करना है, बहुत सारे सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाते जाना है, लेकिन उसकी शुरुआत इस अगले ट्रैक के साथ होनी चाहिए, है ना? तो एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए छापन सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी पर। बहुत जबरदस्त किस्से आपके साथ बांटे जाएंगे इस ट्रैक के उस पार। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी।